जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

भाई ऐसा है कि सारे के सारे जो हमें इस समय सिंगापुर से सुन रहे हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, हाँ अगर आप मलेशिया में काम कर रहे होते ना, तो आज मतलब आज आप छुट्टी मना रहे होते. कैन यू बिलीव दैट? सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Mercy 24/7 on the morning show in Nukau with you. And Johor ki government jo hai, ji haan Malaysia ki baat kar rahi hu, unhone declare kiya hai special state public holiday aaj ke din mein to celebrate Johor Darul Tazim, that's JDT football club ka win. Matlab sochiye, football club jeet gaya Malaysia cup. तो भाई बनती है बनती है. ऑल्सो नोन एज अ सर्दन टाइगर्स, जेडीटी ने हराया कुशिंग सिटी एफसी 2-0, जी हाँ, इन द फाइनल टू विन देयर फोर्थ कंसेक्यूटिव मलेशिया कप टाइटल. एंड दिस इज द ओनली क्लब जिसने आज तक चार चार बार ये टाइटल जीता है. जोहर के चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा स्पेशल हॉलीडे डिक्लेयर कर रहे हैं, जी हाँ, और उन्हें मतलब नेसेसरी जो भी बातें करनी थी, कहाँ से कंसेंट लेनी थी, वो सब करके उन्होंने किया. वेल दिस विक्ट्री इट्स अ गिफ्ट टू द पीपल ऑफ जोहर एंड जेडीटी सपोर्टर्स जो की खड़े हैं टीम के पीछे थ्रू एवरी सिचुएशन, ऐसा कहा मिनिस्टर ने. साथ ही में सेड की सक्सेस से ये प्रूव होता है दैट कंटिन्यूड कमिटमेंट ऑफ द जोहर लीडरशिप इन डेवलपिंग मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस फुटबॉल की वजह से जेडीटी आज उस स्टेट का प्राइड बन चुका है एंड अ रिस्पेक्टेड टीम एट द नेशनल एंड एशियन लेवल. वेल ऑसम गाइज, हम तो कहते हैं सिंगापुर की भी सारी टीम्स ऐसी जीतते रहे और हमें छुट्टियां मिलती रहे. व्हाट्स इट कुछ नहीं टूटना चाहिए यहाँ पर, बस घुंघरू ही टूटने चाहिए, दिल को बचा के रखिए. That was cheesy. Good morning.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: बॉलीवुड की खबर का टाइम. जी हाँ, इट्स अबाउट 8:27 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज रेणुका विद यू. इट्स टाइम फॉर द मॉर्निंग शो एंड द गपशप. सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24. हैव यू एवर वंडर्ड गाइस कि बॉलीवुड में कौन सबसे ज्यादा अमीर है? ज्यादा सोचो मत, आंसर मैं ही दूंगी जब सवाल मैंने ही पूछा है. तो भाई शाहरुख खान, जी हाँ, ही इज कंटिन्यूइंग टू बी द रिचेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड एंड जूही चावला द रिचेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया. ऐसे कैसे यार? ऑफकोर्स अपने पति के पैसों के साथ, राइट? आई मीन हाउ कैन शी इज नॉट इवन एक्टिंग एनी मोर. और करण जौहर जो है, जी हाँ, करण जौहर हु होल्ड्स द टाइटल ऑफ द वेल्दीएस्ट फिल्म मेकर इन बॉलीवुड. बताइए हाल ही में ये वाली जो लिस्ट रिलीज हुई है उसमें करण जौहर का नेटवर्थ, अपने कान और अपना दिल संभालिए. जी हाँ, इट इज एन इम्प्रेसिव 1880 crores.
1: तो कह दूं आखिर क्यों पल में यो दीवाना मैं हो गया.
0: तुम्हें जो मैंने देखा करण जौहर, क्या बात है, कमाल किया है. और आप सोचिए कि इंडस्ट्री लीडर्स लाइक एसएस राजमौली सर या संजय लीला भंसाली हैं या आदित्य चोपड़ा हैं, इन सब से, कैन यू इमेजिन, इन सब से आगे करण जौहर. And in the overall list for top 5 richest Bollywood personalities, जी हाँ, he is number 4. क्योंकि शाहरुख खान के पीछे हैं, वो जूही चावला के पीछे हैं और ऋतिक रोशन के पीछे हैं. साथ ही साथ में अमिताभ बच्चन जो हैं, वो number 5 पर हैं. वो quite a surprising list, is it? मतलब apart from शाहरुख खान, मुझे बाकी सारे ऐसे लग रहा है अमिताभ बच्चन 5 पे. इतने सारे KBC के seasons करने के बाद भी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है.
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: And it seems कि अगर मलेशिया की स्पोर्ट्स की बात हुई है तो सिंगापुर कभी पीछे थोड़े ना रहेगा. On Radio Masi 24/7, there is some amazing news. Serious headlines with a not so serious vibe. Only on the morning show on Radio Masi 24/7. Lovely. So guys, Kareena, Shashi Kumar. जी बिल्कुल, इन्होंने अपना नाम डाला है हिस्ट्री बुक्स में. बताइए बच्चों को और हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी करीना शशि कुमार के साथ में. अब कल ही के दिन में शी बिकेम द फर्स्ट सिंगापुरियन स्क्वॉश प्लेयर टू विन एन एशियन जूनियर इंडिविजुअल एज ग्रुप टाइटल. भाई सिंगापुर की फर्स्ट एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियन जो रही है 1987 से, दैट इज मा ली लियान, व्हेन देयर वाज ओनली वन कैटेगरी बिफोर वेरियस एज ग्रुप्स वर इंट्रोड्यूस्ड 2006 में. तो भाई एट दिस अमेजिंग प्लेस चाइना में, जहां पर 12 साल की ये करीना है, उन्होंने जापान के रियो योशिनो को हराया 11-2, 11-3, 11-1 इन 15 मिनट्स टू विन द टाइटल अंडर 13 फाइनल. गर्ल्स कैटेगरी में करीना ने कहा, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी एंड आई होप दैट मोर सिंगापुरियंस कैन विन द एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप्स. एंड शी सेड, मैंने बहुत मेहनत करी है, आई वाज होपिंग टू विन बिकॉज ये मेरा एम रहा है पिछले साल से. क्या बात है. Well, that's a guy. Next gana coming up right now and I think we should all be very, very happy. Lekin hamari public holiday nahi declare hui. I think wahan thodi garbad hogi, nahi? Good morning, everyone. Renuka with you.
1: This is Radio Masti 24/7 Live. The only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: Alright, और इस घंटे के खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट वन ऑफ द न्यूज विच वॉज हिटिंग द हेडलाइंस इन द पास्ट वीक. तो भाई उसके बारे में जानने के लिए जरा 10 सेकेंड इंतजार कीजिए. मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच. कितनी कॉफी पी ली वैसे सुबह से? मेरा सेकंड कप चल रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से कुछ लोग जिम शिम जा रहे हैं या खत्म करके वापस आ रहे हैं. कुछ जो हमको फोटोज भेज रहे हैं सनराइज की और कुछ हमें छुप के सुन रहे हैं, है कि नहीं? दैट कवर्स ऑल माई व्हाट्सएप मैसेजेस राइट नाउ गाइज. एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन. पिछले हफ्ते की मेजर खबर जो यहाँ पर मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि रेजिग्नेशन ऑफ सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को पो खून फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑफिस. वेल ऑफकोर्स इट विल मार्क अ लॉस ऑफ मिनिस्टीरियल एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग की लीडरशिप टीम रिमेन्स रेजिलियंट गिवन द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन. वेल हाल ही में बात करते हुए जब अनाउंसमेंट करी डॉक्टर को ने अपने इम्पेंडिंग डिपार्चर की फ्रॉम द फ्रंट बेंच, सभी ने ये कहा कि भाई काफी टैलेंट पूल इस समय इकट्ठा है विद इन द फोर्थ जनरेशन पॉलिटिकल लीडरशिप टू फिल द वैकेंसीज, तो उस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी सरप्राइज डेवलपमेंट रहा एक्चुअली, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द टोल दैट पब्लिक ऑफिस टेक्स ऑन पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज. वेल वाकई मेहनत तो बहुत होती है. प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये वाला अनाउंसमेंट आपको शायद पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, May 22nd को अनाउंस किया गया था कि फैमिली रीजंस की वजह से डॉक्टर को इज गोना स्टेप डाउन इन हिज रेजिग्नेशन, व्हिच इज वेरी अनयूजुअल इन सिंगापुर, जहां पर पॉलिटिशियंस नॉर्मली हटते नहीं है अपनी पोजिशन से. उसको एक्सेप्ट किया, उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया प्राइम मिनिस्टर वॉन्ग ने, और इस समय इट इज गोइंग टू टेक इफेक्ट फ्रॉम June 1st. जी हाँ. Well, let's welcome whoever steps into his shoes and hope ki bhai itna stress na ho, kyunki stress hota hai to it is better to just leave the position and move away. All right, sounds like dear masti dil se wala show, lekin nahi, it is not. Good morning.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: 9:01 और यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका कह रही है, एक मिनट रुको, ऐसे मत जाओ।
0: सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब, ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: भाई जब चाइना प्रॉस्पर करता है तो सिंगापुर में भी और अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, कभी सोचा है आपने? Good on the morning show. Good morning again. I'm talking about the relationship between China and Singapore and how the economies are absolutely interlinked and kind of connected. So, भाई ऐसा है कि shared interest होते हैं जहाँ पर relationship जो है और भी ज़्यादा बढ़िया बनता है, और especially जब ethnic majority जो है वो बिल्कुल दोनों जगह same है, right? So, senior minister Lee Hsien Loong है, उन्होंने हाल ही में multiple participants in Asia, जी हाँ, उनसे बात कर रहे थे वो, and Singapore के बारे में बात करी, तो उन्होंने कहा कि वे पार्टनरशिप्स विद ऑल द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड जो है हमारी, तो सिंगापुर कैन मैनेज एनी डिपेंडेंसीज एंड हम एक पार्टनर पर ओवर रिलायंट भी नहीं है। ही सेड दैट आइडेंटिटी इज समथिंग व्हिच वी हैव टू मैनेज वेदर वी हैव अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स विद देम और लेस। जी हाँ, सिंगापुर चाइना रिलेशंस की बात हो रही थी एंड एंजाइटीज कि भाई क्या सिंगापुर और चाइना के बीच में बढ़िया चल रहा है सब कुछ या कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि हम चाइनीज मेजोरिटी कंट्री हैं बट वी आर अ मल्टी racial society. हम एक अलग देश हैं, अलग हैं बिल्कुल चाइना से, with separate sovereignty and we cooperate as friends and in order to have mutual benefit. उन्होंने कहा जब मैं अपने चाइनीज पार्टनर्स से मिला था but हमने मैंने यही बात उनको भी एक्सप्लेन करी and I think they kind of understand when they see me and they see my delegation and I obviously met them with a multiracial delegation. तो बहुत ही बढ़िया सी बात, उन्होंने कहा कि भाई अगर वो सिंगापुर आएंगे और हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, दे विल सी कि हमारी सोसाइटी कैसे ऑपरेट करती है, हम किस तरह से बढ़िया से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर एन एब्सोल्युटली डिफरेंट रिपब्लिक। क्या बात है, मतलब बड़ा ही डीप वाला कॉन्वर्सेशन। छाप छोड़कर आए हैं हमारे सीनियर मिनिस्टर, बड़े आगे सुनते हैं ये। लेट्स रेज द टेम्पो, व्हाट से गाइस, गुड मॉर्निंग।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 40% ऑफ, 40% जॉय आलुकास,
3: 40% ऑफ, ओ माय गॉड, लेट्स गो।
4: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। सुन सुन बाबा सुन सुन बाबा सुन सुन सुन जॉय आलुकास लाया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड डायमंड पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज। Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

9:14 32 सेकंड यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका विद यू। एक बात बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने अपने आप को अपस्किल किया है कि नहीं किया, ये सिर्फ चैट जीपीटी पर टिके हैं अभी तक? मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज Views and a pinch. मस्ती। सिंगापुर में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ये मैं नहीं कह रही, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, एंड देयरफॉर भाई कुछ लोग वीडियोस लेके भेजते हैं ट्रैफिक पुलिस को, तो बच के रहिएगा भाई, गलत चलाएंगे ही नहीं, गलत कोई काम ही नहीं करेंगे, तो आपका वीडियो लेगा क्यों कोई, अनलेस यू आर फॉन्ड ऑफ गेटिंग क्लिक्ड एंड पेपराजी पसंद है आपको अपने पास। सो वेल द ट्रैफिक पुलिस इस समय दे आर प्लानिंग कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई ट्रैफिक वायलेशंस। जी हाँ, जिसकी वजह से पेनल्टीज और समन्स जो है जल्दी जल्दी बाहर भेजे जा सकते हैं। वेल ट्रैफिक पुलिस को इस समय 3,000 से भी ज्यादा वीडियोज मिलते हैं मंथली ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस। हाँ, ये पब्लिक सबमिट करती है, और क्योंकि डिटीरियोरेटिंग रोड ट्रैफिक सिचुएशन है तो और भी सबमिशंस बढ़ती चली जा रही हैं। अब अगर आप इस्तेमाल करते हैं AI पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स टूल का, विच इज कॉल्ड ट्रैफिक रूल एनालिसिस एंड कंप्लायंस रिकॉग्निशन ट्रेसर, तो भाई फिर पुलिस जो है ना फटाफट पता लगा लेगी कि ये वीडियोज हैं और इनके साथ में क्या समन्स भेजने हैं। एवरीथिंग विल गेट ऑटोमेटेड। नॉट बैड, हाँ, प्रीटी इंप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के तरीके। व्हाट से गाइस, मैं धुरंधर के शोर वाले गाने के बाद में ऐसे गाने तो बनते हैं। But don't forget, it's still Monday, all right? Short week है, by the way. Cheer up, guys. Chin up.

बॉलीवुड की खबर इस समय, जी हाँ, रामायण की बात करते हैं मंडे को, और कौन सी बेटर बात होगी वैसे भी, रामायण। सुबह का असली वेकअप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24। ऑलराइट, जब से टीजर निकला है रामायणा का, आपको पता है नितेश तिवारी की जो माइथोलॉजिकल एपिक रामायणा बन रही है, इट हैज बीन स्टेडली बिल्डिंग ऑनलाइन। लोग हो गए हैं पागल। हम तो आपको बता चुके हैं, कई शोज में बता चुके हैं कि भाई साहब इसमें दिखने वाले हैं रणबीर कपूर, एंड ये फिल्म है दो पार्ट्स में। ऑलराइट, एंड इट्स बीइंग पोजीशन्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स जो कभी भी इंडियन सिनेमा में बना है। 4,000 करोड़, जी हाँ, यू हर्ड मी राइट। वेल, A.R. रहमान ने हाल ही में ये बताया दैट ही हैज टीम्ड अप विद लेजेंडरी जर्मन कंपोजर हांस जिमर फॉर द साउंड ट्रैक। और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा कोलैबोरेशन है ना, उफ, इट इज एपिक एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ एपिक। धूम तो मचाएगा शायद ये वाला पूरा का पूरा टीजर के बाद। हमारी फिल्म की बात कर रही हूँ मैं एंड दिस कोलैबोरेशन। लेकिन बात करते हुए A.R. रहमान ने ये कहा कि भाई दो एकेडमी अवार्ड्स के विनर हैं जिमर एंड 4 ग्रैमीज के, सो आई थिंक इट्स एन एपिक कोलैबोरेशन। और हमारा देश, हमारा कल्चर, जी हाँ, इमेजिन रामायणा जैसी चीज, उसमें इस तरह का कोलैबोरेशन, आई थिंक इट्स अमेजिंग, राइट? इट्स कमेंडेबल। एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग गुड म्यूजिक टू, आफ्टर ऑल धुरंधर के म्यूजिक से बोर हो गए ना हम सारे, सो आगे बढ़ने का टाइम आ गया। गुड मॉर्निंग। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क, सिंगापुर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: महंगाई महंगाई महंगाई, इंसान बार बार यही चीज सुनता है, कभी ये नहीं कहते जी सब कुछ सस्ता हो गया, जितना लेना है ले लो, लूट लो।
1: सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Mumbai.
0: मुझे लगता है मेरे वेट के अलावा एक महंगाई है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, राइट? वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, रेनुका विद यू ऑन द मॉर्निंग शो। जी हाँ, ग्रैब की बात कर रही हूँ इस समय। ग्रैब एक्सटेंड करेगा अपना टेम्पररी फेयर चेंजेस, जी हाँ, विच इज हायर फ्यूल सरचार्ज एज वेल एज इंक्रीज्ड मीटर फेयर्स अंटिल July 31st। जी हाँ, तो जो चीज़ आपको लग रहा था हाल ही में खत्म हो जाएगी, जल्दी से खत्म हो जाएगी, नहीं जी, उन्होंने कहा हम एक्सटेंड करेंगे, अभी भी महंगाई उतनी ही है, बढ़ती चली जा रही है। सो वेल, ग्रैब ने इसी वीकेंड पर ये कहा कि कंटिन्यूड दे विल डू दिस टू provide continued relief to its drivers जिनके higher fuel prices की वजह से नुकसान होने लग गए हैं। ये fare adjustments जो हैं, they were first made known in March, अगर आपको याद है, और May 31st तक ये चलने वाले थे और अब इस time पर नहीं चल पाएंगे। जी हाँ, Grab ने announce किया कि Grab cab जो है वो बढ़ाएगा अपना unit fare for meter taxi rides 26 cents से 27 cents तक for every 45 seconds of waiting, और 400 meters आप travel करें 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक। वेल, आई थिंक इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट सीधी सी बात में इतना बताना चाहती हूँ आपको कि 50 सेंट फ्यूल सरचार्ज है, 90 सेंट्स है बाकी ट्रांसपोर्ट बुकिंग्स के लिए। तो फिर अगर आपके बिल में आए ज्यादा पैसे तो आप कहिए पॉकेट्स को और गहरा होना पड़ेगा। फिलहाल तो नुकसान गहरा हुआ, बड़े खर्चे गहरे हुए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई विल बी बैक वन लास्ट टाइम टू गिव यू वन मोर अपडेट एंड देन इट्स टाइम फॉर यू टू गेट इनटू द मस्ती कैफे फॉर दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन,
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

सुबह का असली वेकअप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। और इस समय शो को खत्म करते हुए थोड़े भारी दिल से आपसे वो वाली खबर शेयर करना चाहूंगी जो भारत में सुर्खियों पर है। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से जी हाँ चल रहा था दत्तुषा शर्मा केस भारत में, जो कि एक डाउरी डेथ से रिलेट किया जा रहा है। आज भी भारत में इस तरह की बातें देखकर बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है। आप जानते हैं कि 12 मई को जब तुषा अपनी माँ से बात कर रही थी शाम को, और फिर अचानक से उनके पति की आवाज़ आई कि किससे बात कर रही है, और उसके बाद फ़ोन गिरा, फ़ोन कटा, और उसके बाद से उसके माँ बाप ने फ़ोन बार बार करे। लेकिन कुछ देर के बाद में जो उनकी मदर इन लॉ है, उन्होंने तुषा की भाभी को बताया कि शी इज़ नो मोर। और उस थोड़ी देर के बीच में क्या क्या हुआ और तब से लेके अब तक क्या क्या हो रहा है इस केस पर, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए, देखिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत में आज भी जो बेटियों के साथ में हो रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग टू से द लीस्ट। तो भाई अपने व्यूज़ भी न्यूज़ चैनल्स को जाके दीजिए, क्योंकि इस तरह से आज ही नहीं लेकिन फ्यूचर में भी अपनी बच्चियों को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। ऑन रेडियो मस्ती विद दैट वेरी वेरी वेरी सैड एंड सोरोफुल न्यूज़, आई वुड लाइक टू से हैव अ फैंटास्टिक गाइज डे गाइज। एंड जी हाँ, ट्यून्ड इन रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ में याद रखिएगा, इफ़ यू आर फीलिंग लोनली, इफ़ यू आर इन ट्रबल, इफ़ यू फील दैट यू नीड समवन टू टॉक टू, द नंबर इज 9151896 3। वी आर राइट हियर टू सपोर्ट यू थ्रू एवरी फेज ऑफ लाइफ। हैव अ फैंटास्टिक डे एंड अ वीक अहेड। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द। दिस इज द मॉर्निंग शो एंड रेणुका साइनिंग ऑफ।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: पुरुष नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Frosty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. टाइम टू रेज द बार. मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल. Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा. गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का.
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम. गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई.
3: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज. मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप. आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, अगर आपको लग रहा है कि मंडे थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक बिहेव कर रहा है ना, तो रिलैक्स, सेम फीलिंग सबकी है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, कैसे हैं आप? कोई कॉपी लेके ऑफिस भाग रहा है तो कोई एमआरटी में आंख खोलने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोग अभी भी वीकेंड को इमोशनली वीकेंड से एक्चुअली मूव ऑन नहीं कर पाए। पर चलो, मूड को थोड़ा अपग्रेड करो यार। दिस इज मस्ती हैंग आउट विद मुग्धा लाइव फ्रॉम सिंगापुर। और आज की डेट ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डेट भी याद दिला देता है कि आज डेट क्या है। समटाइम्स पीपल डू फॉरगेट अबाउट इट, राइट? इट्स 25th ऑफ मे, यानी कि मंडे। 25th मे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। मतलब ऑफिशियली वो दिन है जहां पे लाइफ को भी थोड़े से फुटबॉल की तरह हम इधर उधर ट्रीट कर लें, है ना? गोल पे फोकस रखना है और अननेसेसरी टैकल्स को इग्नोर करना है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग, आज गीक प्राइड डे है, तो टेक लवर्स, गेमर्स और एक्चुअली ये बोल के जो फैक्ट्स को करेक्ट करने वाले लेजेंड्स हैं, टुडे इज योर डे। चलो अब म्यूजिक और मस्ती दोनों को स्टार्ट करते हैं विद ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स। बहुत सी बातें करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, जस्ट फॉर अ सेकेंड इमेजिन करो, पूरा क्राउड इज सुपर एक्साइटेड, म्यूजिक बहुत लाउड है, सब आसमान की तरफ देख रहे, एंड देन सडनली समवन सेज इस बार वो नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली पहला जो आपके थॉट आएगा दिमाग में, दैट विल बी लाइक क्या कैंसिल हो गया। ओके रिलैक्स, पैनिक मत करो, बात हो रही है सिंगापुर के नेशनल डे परेड की, दैट इज एनडीपी। और इस साल का एनडीपी काफी डिफरेंट होने वाला है, यू नो, परेड फाइनली नेशनल स्टेडियम वापस आ रही है आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। Bigger setup, new performances, and 3 brand new songs ke saath. But there's a twist. Is baar red lines and parachute jump, aerial flypast, mobile columns ye nahi honge, because this is the indoor venue setup. I know thoda emotional damage ho gaya hai. People are commenting on these posts and everything, because bina unke to maza hi nahi aayega ante sadar. But Singapore being Singapore, drone shows, fresh surprises, ye sab tayar hai. Matlab Goosebumps पैकेज आपके लिए है, एंड why not to step on something new? I know, कुछ चीजें हमेशा आपके साथ रहती हैं, जैसे कि अगर आप सर्कस देखने जाओ और हवा में छलांग लगाते लोग ना दिखे तो मजा नहीं आता। It seems like something is missing. वैसे यहाँ भी होगा, बट देखो क्या है ना, कुछ चीजों को चीजों के हिसाब से बदलना पड़ता है, बिकॉज इट्स इनडोर तो यू कांट हेल्प अबाउट इट। खुशी की बात है ना, एनडीपी वापस आ रहा है 10 साल बाद हमारे स्टेडियम में, एंड देन देयर बी न्यू थिंग्स, तो नए गाने हैं 3-3, सो एंजॉय न्यू थिंग्स, है ना, डोंट क्राई ऑन क्या नहीं हो रहा है। बी हैप्पी विद क्या नया हो रहा है, राइट?

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हे हाय, कुछ लोगों का जो ये वीकेंड प्लान होता है ना, बड़ा सिंपल होता है, बस थोड़ा जेबी आते हैं, इसी में पूरा वीकेंड बीत जाता है। लेकिन फिर रियलिटी एंट्री होती है, लाइक रियलिटी चेक और गूगल मैप सडनली आपको हर तरफ लाल लाल लाल दिखे हैं, मुझको दैट इमोशनल डैमेज आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप भी अपकमिंग हॉलीडेज में मलेशिया साइड क्विक गेटअवे प्लान कर रहे हैं तो दिस अपडेट इज फॉर यू। सुन लो भाई, ICA ने अलर्ट दिया, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ, मेरे को क्या पता, ICA ने अलर्ट दिया है कि वुडलैंड्स और तुआस चेक पॉइंट्स पे नेक्स्ट फ्यू डेज में वेरी लाइक कैप्स में वेरी हैवी ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है। यू नो व्हाई? हरी राया हाजी, वैसाख डे और जून स्कूल हॉलीडेज ऑफ कोर्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर तीन बिगाड़ा तो वीकेंड का प्लान थोड़ा बिगाड़ा। और हैवी का मतलब नहीं, लाइक वेरी हैवी का मतलब, रीसेंट लॉन्ग वीकेंड पे कुछ ट्रैवलर्स को इमिग्रेशन क्लियर करने में अराउंड 3 घंटे तक लग गए थे। तो मतलब एक इस बार जो जेबी ट्रिप आप उसमें ना पासपोर्ट के साथ पेशेंस भी कंपलसरी कर दिया, यू नो एक रेगुलेटरी नेकलेस में पासपोर्ट तो है पर उसके साथ पेशेंस भी लिखा है, तो उसके बिना तो घर से निकलना ही मत, समझ रहे हो। स्नैक्स तैयार रखो, फोन फुली चार्ज रखो, प्लेलिस्ट अमेजिंग बना लो, कुछ मेरी तरफ से भी ले लेना जो मैं प्ले कर रही हूँ। बट देन क्यों में अगर आपका मिनी वेकेशन बीत जाता है तो डोंट बी सरप्राइज। थोड़ा बहुत टाइम तो क्यू में ही निकल जाएगा। बी रेडी टू बी इन द क्यू।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Tushahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235 8840. Terms and conditions apply.

आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। इन सिंगापुर 25 years, सोचो कितने बर्थडेज, कितनी फैमिली डिनर्स, एनिवर्सरीज, फर्स्ट डेट्स, आज बाहर खा के आते मोमेंट्स का पार्ट रहा होगा ये एक प्लेस, है ना। एंड ऑनेस्टली हमारे कितने फेस्टिवल्स को स्पेशल बनाया है इस एक जगह ने। कोई रेस्टोरेंट 25 साल कंप्लीट तभी करता है जब लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, फीलिंग्स के लिए भी वहां जाते हैं और उसको याद रखते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट शाही महारानी एट ट्रैवल सिटी हैज डन विद अस। हर त्योहार, हर स्पेशल फीस्ट, हर स्पेशल ओकेजन has been celebrated with Shahi Maharani, right? You have been a part of us and we have been yours, Anna? Serving the royal North Indian flavors with that warm, classic hospitality. Log bar bar aate hain, they just keep coming back aur isi ke liye aate hain. And now they are celebrating the 25 glorious years of their being with us, right? 25 saal. And kya kar rahe hain? They are offering their iconic signature dishes at just 25+ Singapore dollars. Aankhon ke saath movie khul gaya na, I know. And what not? Murg tikka, tandoori chicken, chicken makhan wala, palak paneer, Shahi's fish Amritsar curry and Shahi subs sizzler. It's all a part of the special anniversary celebration. Ye offer valid hai 30th June tak. Dine in only hai, tabhi to feel karoge aap us jagah ko. With a minimum spend of $100 plus per table. So, अगर आपके लिए मेमोरीज मायने रखती हैं, कंफर्ट एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट प्रॉपर रॉयल टेस्ट एंड फील, शाही महारानी इज कॉलिंग एज दे हैव ऑलवेज बीन कॉलिंग।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हे हाय, शो की सेकंड आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस आवर इज अ बैंग ऑन बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। आजकल बॉलीवुड ट्रेलर्स में जब आते हैं तो देख के ऐसा लगता है कि फीलिंग आती है कि यार ये फिल्म है या ग्रुप चैट का कियोस्क। सीरियसली इतना कुछ होता है ट्रेलर में, बाय गॉड। और अगर फिल्म डेविड धवन की आ रही है उसमें वरुण धवन है, दो हीरोइंस हैं, दो शादियां हैं, दो बच्चे हैं, पूरा फुल फैमिली ड्रामा है, तो कियोस्क इमेजिन आप कर सकते हो। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जो

सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना। इस गाने के बगैर तो मैं ये बात कर ही नहीं सकती थी। Yes, the trailer is finally out, so the cat is out of the bag. और प्योर वाइब ओल्ड स्कूल डेविड धवन मैडनेस है भाई साहब। ट्रेलर देख के मेरा दिमाग तो उधर ही रह गया। मुझे पता है फिल्म में क्या होने वाला है, मुझे पता है कहानी में क्या होने वाला है, मुझे पता है क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ये फिल्म थिएटर्स में जाके देखनी है। इतना गाना है, इतना मजा है, मनीष है, आउच भी है। वेल, फिल्म में वरुण के साथ है मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े जो कि उनकी दो पत्नियां हैं, है नहीं है वो मुझे नहीं पता। और स्टोरी में प्यार से ज्यादा कंफ्यूजन है, और वरुण अगर कंफ्यूज होते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। प्रेगनेंसी केओस है, रिलेशनशिप केओस है, रिलेशनशिप का ड्रामा है, और एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ये थोड़ी हाउसफुल है और थोड़ी वरुण धवन की और डेविड धवन की मिक्स गोविंदा ड्रामा है। एक चीज है, पता नहीं यहाँ पे भी जिमी शेरेगल को कुंवारा क्यों रखा है, और क्या मोनी रॉय की एंट्री के बाद भी जिमी कुंवारे रह जाएंगे। मुझे बड़ा बुरा लगता है जिमी शेरेगल के लिए, हर पिक्चर में आते हैं उनकी शादी टूट जाती है, या तो ये बंदा कुंवारा ही रह जाता है। एक कुंवारा क्यों नहीं जा रहा हमारा, ये तो यही सोच रहे होंगे, मेरे क्या हमारा क्या होता क्या होता है। बैकग्राउंड में जब बजता है चुनरी चुनरी आहा हा हा चुनरी चुनरी ओहो हो हो मजा ही आ जाता है। मैं तो ट्रेलर देख के डांस करने लग गई थी। ये तो नो मीरा, ऑनेस्टली बॉलीवुड को ना कभी कभी बस यही चाहिए होता है, फुल पागलपंती एंड फुल एंटरटेनमेंट। इसी बात

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलू तुझे मेरी कसम। हाय, बात किसी की हो रही है, गाना मैं कोई गा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में वो ही चल रहा है, द नॉस्टैल्जिया 90s का। खैर, फिलहाल बात करते हैं गांस की। गांस का रेड कार्पेट ना कभी कभी फैशन इवेंट कम और फुल बॉलीवुड एंट्री जोन ज्यादा लगता है। आजकल गांस में हॉलीवुड ज्यादा बॉलीवुड स्टार दिख रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड साइन। पर फिलहाल वो आई हैं जिसका सभी को था इंतजार, वो क्वीन आ गई। यस, जिस मोमेंट का वेट कब से हो रहा था, जब से गांस शुरू भी नहीं हुआ था, फाइनली हो गया। ऐश्वर्या राय बच्चन मेड अ कांस अपीयरेंस इन अ स्टनिंग ब्लू गाउन बाय अ वेरी फेमस डिजाइनर अमित अग्रवाल, एंड ऑनेस्टली इंटरनेट का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम था, दैट्स अ क्वीन बिहेवियर। सच में फ्लोइंग मेटालिक ब्लू आउटफिट, ड्रामेटिक सिल्हूट, एंड दैट सिग्नेचर ऐश्वर्या ऑरा, मतलब रेड कार्पेट सडनली लाइक ये कितना एक्सपेंसिव है, ऐसी वाली फीलिंग आ गई। सच बोलूं, कांस और ऐश्वर्या का कनेक्शन ना अब फैशन हिस्ट्री जैसा फील होता है। हर साल एंट्री होती है और फिर पूरा इंटरनेट जूम कर करके हर एक डिटेल पे फोकस करता है। सम पीपल वेयर आउटफिट्स एंड सम पीपल क्रिएट मोमेंट्स। ऐश्वर्या डेफिनेटली शी इज द सेकेंड कैटेगरी। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर का सल्यूट गाउन पहना था। अगर मैं उनके गाउन के डेफिनेशन मतलब डिस्क्राइब करने बैठ गई तो मेरा शो कम पड़ जाएगा। और एनीवे, जिन्होंने अभी तक ऐश्वर्या का कांस लुक नहीं देखा है, जाके देखो। और क्या,
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: You know what? Some legends retire. और कुछ legends बोलते हैं, nah, one more battle, dude. Honestly, इस न्यूज ने पूरा ओल्ड स्कूल एक्शन जो फैन बेस है ना उसको एक्टिव कर दिया। Arnold Schwarzenegger has officially confirmed कि King Conan film finally जो है वो 2027 में filming start करेगी। Yes, वो ही iconic warrior character जिसे उन्होंने 1980s में immortal बना दिया था। Can you believe this? Arnold Schwarzenegger. आप समझ जाओ मैं इतना क्यों excited हूँ। मैं हूँ तो आपका होना तो बनता है यार, come on. And the best part, इस बार Conan is not the young fighter. एक एजिंग किंग होगा, यस, थोड़ा टायर्ड, थोड़ा वाइजर, बट स्टिल द डेंजरस, यस, मतलब इमेजिन करो ना द ऑरा, व्हाइट बियर्ड, जायंट स्वॉर्ड, रॉयल थ्रोन और बैकग्राउंड में अर्नोल्ड की वॉइस, द गूज़बम्प्स बॉस। वैसे भी हॉलीवुड का एक रूल है, सुपर हीरोज चेंज हो सकते हैं पर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप स्टार्स वो परमानेंटली सिनेमैटिक रहते भाई।
2: जी करदा बे जी करदा तन कोल बिठावा, जी करदा बे जी करदा तन कोल बिठावा, जी करदा।
1: मैं तो पागल हो रही हूँ, कितना कुछ हो रहा है बॉलीवुड हॉलीवुड में। हाय, एक और पागल करने वाली न्यूज है। यस,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: मान न मान, आम है हमारा मेहमान।
2: जी,
1: मैंगो सीजन आए और बे बुलाए अगर आम आ जाए तो इकलौता ऐसा गेस्ट होता है जो बिना बुलाए भी पूरे सम्मान के साथ उसका वेलकम किया जाता है। आम, आम के सीजन पे एक हिडन प्रॉब्लम पता है क्या है? एक मैंगो खाने बैठो और उसके बाद आखिरी तक कब पहुंच जाते पता नहीं लगता, पूरा बॉक्स खत्म हो जाता है। एंड फैक्ट, दुनिया का सबसे लव्ड फ्रूट ऑफिशियली मैंगो को ही माना जाता है। मतलब आम इज नॉट जस्ट फ्रूट, इमोशन है वो, आंखों से आंसू नहीं आते। आम, आम, आम। और इस मैंगो सीजन को और ज्यादा जूसी बना रहा है gtmartonline.com। फ्रेश देवगढ़ अल्फांसोज हैं $39 पर बॉक्स एंड रत्नागिरी अल्फांसोज हैं $35 पर बॉक्स, स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म इंडिया से, विद अ फ्री डिलीवरी अगर आप ऑर्डर करते हो $70 से ऊपर का। ऑफकोर्स करेंगे, इससे कम में कोई आम खाएगा क्या? बात कर रहे हो। और हाँ, अगर आप चेकआउट करते हो तो उसके बाद एक कोड यूज करना, new10, 10% का ऑफ है यार। और अगर आपने gtmartonline.com की वेबसाइट पर रजिस्टर किया है और उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है और हमारे नंबर 9151896 पर भेजा है तो घर बैठे और ऑफर्स मिलेंगे। जी, हम भी तो यहाँ बैठे हैं, आपको उधर आम मिलेंगे, हम आपको गुठलियों के नाम देंगे। समझ रहे हैं? आई मीन कितना कुछ हो रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो आप लोग? फायदा उठा फायदा, कभी कभी कुछ चीजों का फायदा उठा लेना चाहिए। सिंगापुर, ये मैंगो मॉडर्न सीजन ऑफिशियली कब का स्टार्ट हो चुका है? व्हाट आर यू मिसिंग ए? समझे? जाओ जाओ।
3: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज, रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, शो की थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन चल रही है सिंगापुर में। नो व्हाट, लोग विंडो शॉपिंग के नाम पे ना ज्वेलरी ट्राई करने जाते हैं और फिर फुल शादी वाला सेट इमेजिन करके वापस आ जा रहे हैं। ऑनेस्टली ब्लेम नहीं कर सकते आप उनको, बिकॉज जोया लुकास लेकर आया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। गोल्ड हो, डायमंड हो, पोलकी हो या कोई भी प्रेशियस ज्वेलरी हो, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस, मतलब स्पार्कल भी एंड सेविंग्स भी। बताओ, जाओगे विंडो शॉपिंग करने, लेके पूरा का पूरा सेट आ जाओगे, और क्या चाहिए लाइफ में आपको। ये ऑफर वैलिड है टिल 14th of June। साथ ही इजी पेमेंट प्लान्स हैं आपके लिए, 100% वैल्यूज ऑन डायमंड एक्सचेंज, ये भी अवेलेबल है आपके लिए। तो अगर आपका बस देखने जा रही हूं वाला मूड बन रहा है ना, ऑल द बेस्ट, बिकॉज जोया लुकास में ज्वेलरी सिर्फ खरीदी नहीं जाती है, तो कहें कि महसूस की जाती है। तो ऑल द हस्बैंड्स, चलो चलो, यही मौका है, खुश कर दो, दिखाने के बहाने दिलाने ले जाओ ज्वेलरी, समझे। जोया लुकास, हमेशा आपके साथ।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल, आजकल वायरल होने के लिए लोग इंटरनेट पे क्या क्या नहीं करते। क्रेजी प्रैंक्स, फेक रिएक्शंस, फुल ड्रामा, है ना। पर कभी कभी एक सिंपल सा मोमेंट आता है किसी की लाइफ में और वो बिना एफर्ट के सबका दिल जीत लेता है। रिसेंटली इंडिया के बैंगलोर की एक महिला है जो ऑनलाइन बड़ी वायरल हो रही है, सिर्फ इसलिए बिकॉज उन्होंने रोड पे काम कर रहे वर्कर्स को चाय और स्नैक्स ऑफर किए, सर्व किए। बस इतनी सी बात, एक्चुअली बस इतनी सी बात। नो कैमरा परफॉर्मेंस, नो लाउड स्पीच, जस्ट अ सिंपल जेस्चर ऑफ काइंडनेस। ऑनेस्टली कभी कभी ना रिस्पेक्ट एक्सपेंसिव चीजों में बिल्कुल भी नहीं आती है, वो एक कप चाय में दे दी जाती है, एक ग्लास पानी में दे दी जाती है। पता है आपको, इंडिया की खासियत है, बहुत से लोग नहीं करते पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कुछ शूट कर लिए जाते हैं और वायरल हो जाते हैं, कुछ चुपचाप अपना काम करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। रोड पे काम कर रहे वर्कर्स को चाय पानी देना, उनकी मदद करना, अपने घर में कंस्ट्रक्शन साइट पे कई लोग काम करते हैं तो उनको भी हम इस तरह से ऑफर करते हैं चाय, स्नैक्स, पानी। सी, मैंने कहा ना सब लोग नहीं करते पर बहुत से लोग करते हैं, और ये जो बहुत से लोग, इनमें से कोई कैसे वायरल हो जाता है। पर ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। सो ये सोच के मत करो कि कोई देख के रिकॉर्ड करेगा, ये सोच के करो कि जो देख रहा है वो लाइफ टाइम रिकॉर्ड करके रखेगा और उसका फल आपको इसी लाइफ टाइम मिलेगा। मैंने क्या बोल दिया, गोल्डन वर्ड्स है मेरे। लिखोगे, रिकॉर्डेड ही तो है ये, है ना अंतरा, रिकॉर्डेड ही है ना। हाँ, तो ये कहीं तो जाएगा नहीं, हमारे आर्काइव्स में भी जाएगा तो पड़ा ही रहेगा, है ना। मैं ऐसी हूँ, मैं बस बोल देती हूँ गोल्डन वर्ड्स, इसे निकलते हैं मेरे मुंह से।

0: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं।
1: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
1: हाय हाय, पेट्रोल प्राइसेस देख करके आजकल लोग गाड़ी कम और इमोशन ज्यादा हैंडल कर रहे हैं, है ना? वो भी हैंडल नहीं हो रहे, ना गाड़ी ना इमोशन। और इसी बीच में इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो आया, या एक वीडियो वायरल हो गया, ऐसे भी कह सकते, बिकॉज बंदा अपेरेंटली रियल कार की जगह पर एक टाइनी मिनी चीनी पिंक टॉय कार लेकर घूम रहा था। I'm a Barbie girl in the plastic car, ऐसी वाली वाइब आ रही इसको देख के। Yes boss, proper Barbie vibe वाली मिनी राइड। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये गैस प्राइसेस है ना, वो बहुत हाई हो रही है, और उससे परेशान होके लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक जो माइक्रो कार्स होते हैं उनका इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये बंदा है सीधा जॉर्जिया से, और उन्होंने मतलब लोगों को मुड़ मुड़ के देखने पर मजबूर कर दिया। यस, अ लिटिल टाइनी टॉय कार जिसको रीबिल किया गया फॉर द रोड, मतलब एक छोटा सा इंजन है, और कह सकते हैं कि बच्चों को बड़ी पसंद आई। इनका नाम है माली और ये हैं 30 साल के, और इन्होंने गैस की प्राइसेस से परेशान होकर के, मतलब पेट्रोल की प्राइसेस से परेशान होकर के और गैस की प्राइसेस से भी परेशान होकर के अपने लिए खुद के लिए एक बड़ी प्यारी क्यूट सी कार बनाई। ये इमेजिन सिंगापुर, अगर आपको यहाँ की सड़कों पर ऐसा ट्रेंड दिखाई दे जाए तो मजा आ जाए ना, ईआरपी का पेन कम हो जाए। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट ना वो अलग लेवल पे है, क्योंकि इस बंदे में कितना पेशेंस होगा, क्योंकि लोग तो लोग हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहे। ओ माय माय, लुक एट द मैन, पिंक कार एंड ऑल, ऐसे वाले बहुत सारे आ जा रहे हैं। एनीवेज यार, ऑनेस्टली बंदा प्रैक्टिकल है भाई, आज के जमाने में फ्यूल बचाना सुपर हीरो स्किल है, तो इसने कर ली।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बात बताइए, ऑनेस्टली कभी आईने के सामने बैठ के हेलो हाय नमस्कार आदाब ऐसे किया है आपने? डेफिनेटली किया होगा, या फिर कार में बैठ के ऐसे मिरर देख करके, है ना, यार मेरी वॉइस में फुल रेडियो वाइब है। कई बार लोगों ने आपसे कहा होगा यार तुम तो बड़ा अच्छा बोलते हो, है ना। कई बार लोगों ने आपसे कहा होगा तुम्हें तो रेडियो पर बोलना चाहिए। कई बार खुद ने फील किया होगा यार ये मस्ती वाले आरजेस की तरह तो मैं भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बोल सकते हो, किसी ने मना नहीं किया। तो कह सकते हैं मे बी दिस इज योर साइन। मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आ रहा है द आरजे एकेडमी, जहाँ पे आप सिर्फ बोलना नहीं करेक्ट बोलना सीखेंगे। बिगिनर्स हो या फिर ऑलरेडी आप माइक लवर हो, यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आपको मिलेगी बिगिनर टू एडवांस लेवल तक विद फ्लेक्सिबल हाइब्रिड क्लासेस। ऑनलाइन भी है और इन स्टूडियो एक्सपीरियंस भी है। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, सिलेक्टेड ट्रेनीज को चांस मिलेगा लाइव होस्ट करने का रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लाइव तो मैंने पहले बोल दिया। देखा, करेक्ट बोलना आना चाहिए, बोलना तो जानते हैं, सभी बोलते हैं, इंसान बोलता ही है। 14 इयर्स एंड अबव के लिए ओपन है एडमिशंस। 14 इयर्स एंड अबव, समझ रहे हैं ना। 12 आवर्स की ट्रेनिंग है, इंडिविजुअल फोकस सिलेबस है और एक प्रॉपर स्टेज टू डिस्कवर योर वॉइस। सो अगर आपके अंदर एक हिडन आरजे है, एक पॉडकास्टर है या एक परफॉर्मर है, दिस इज योर चांस। शायद उनको फाइनली ऑन एयर वो लाल बटन एंड स्टूडियो में बैठने का मौका मिले। ऑन दिस वेरी नोट, जो यहाँ बैठी थी पिछले 3 घंटे से वो फिलहाल आपको बाय बाय कह रही है। मुलाकात करेंगे अगले शो में, क्या पता इस आरजे हंट में मुझे मेरा कोई साथी मिल जाए, या अंतरा को मिल जाए, या हमारे बाकी के आरजेस को मिल जाए, है ना। यू नेवर नो, और कुछ मिले ना मिले मौका जरूर मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले शो में ऑन वेंसडे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कीप स्माइलिंग एंड स्टे चार्ज्ड। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, है ना।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from Gigi Mart, your personal grocer. जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें.
2: I love you, रसना.
1: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: तो फाइनल है कभी आई लव यू नहीं बोलना है राइट
4: राइट
3: कूल वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं
4: Nadi
3: Jamesh Nadi Jamesh Ah, it's so sexy.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
5: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
4: Life थोड़ी boring लग रही है। टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: भरे देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: शाहरुख खान लुकिंग एब्सोल्युटली क्यूटी पाई एटलीस्ट इस गाने के वीडियो में एंड आई रियली वांट टू टर्न बैक टाइम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हेलो हाय नमस्ते वेलकम गुड इवनिंग यस इट्स मंडे इवनिंग एंड आई एम वेरी ब्यूटीफुल वन इन इंडीड मैं हूं आंद्रा आपके साथ और ये हमारा शुरू हो चुका है रिक्वेस्ट शो और सपना आंटी पहले ही आ चुकी है हाजिरी पहले ही लगा दी है एंड आई लव इट जब ऐसा होता है मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो इंतजार कर रही थी आने से पहले there are people but I know there are people who are already tuned in and maybe you are not texting me, but that's fine as well सब ठीक है यार chill chill seriously अरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि usually मैं मंडेज को आती हूँ and usually I talk about that how chaotic it is आज ऐसा हो गया वैसा हो गया rant चालू हो जाता है but there are Mondays which are pleasantly nice like आज मुझे लग रहा है कि कोई वक्त का पहिया थोड़ा घुमा दे not because you know times are tough या फिर बहुत कुछ ऐसा chaotic सा चल रहा है just because I just want to feel nice about it है ना कभी कभी आपको अच्छा भी जब लग रहा होता है तो आपको लगता है कि यार इस वक्त में अगर वापस चले जाते तो कितना ये जो बैठे बैठे आप स्माइल करने लगते हो उस वक्त के बारे में सोच के सो It's a very unique but a very beautiful feeling at the same time. अगर आपने ये feeling feel नहीं की है तो आप feel कर लीजिए कोई ऐसी एक बात जो है जो just आपने सोची और सोच के आपको you know सोचते ही मुस्कुराहट आ गई हो आपके चेहरे पे smile आ जाए What is that one thing? As I speak to you, अगर आपको ऐसा कुछ होता है और एक स्माइल आ जाती है उसको सोचते हुए तो बस यही वो काम है जो मुझे करना था क्योंकि मुझे स्माइल आई तो मुझे लगा कि मैं ऐसा शेयर करती हूँ और आपको भी वो स्माइल आनी चाहिए इसी बात पे एकदम हैप्पी हैप्पी कुछ अच्छे से गाने रिक्वेस्ट कर दो मजे ही चार चांद लग जाएंगे मंडे वाली इस शाम को नहीं वैसे खबरें मेरी पूरी तैयार है सारे गॉसिप्स तैयार है सारे अपडेट्स तैयार है गाने भी जब तक आप नहीं बताओगे मेरी पसंद के वो भी तैयार है तो बस देरी किस बात की बढ़ चौते आगे आगे यहाँ पर दिख रहा है ये जवानी है दिवाली से रेखा भारद्वाज के साथ विशाल ददलानी जब आए तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आया वाया वाया गाना सुनते गुड इवनिंग

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus. Offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
7: 5:17 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एंड भाई मजा ही आ गया देखकर ऐश्वर्या राय बच्चन को। शी वाज लुकिंग सो नाइस। मतलब मेरा तो दिल ऐसे ही गार्डन गार्डन हो गया उनको देख के। एंड आई थिंक दे कैन फिल्म फेस्टिवल में दे केप्ट बेस्ट फॉर द लास्ट। ओके एंड दैट इज व्हाई वी कुड सी ऐश्वर्या एकदम आखिर में। एंड देन ऑफ कोर्स शी वेंट वायरल ओवर द सोशल मीडिया। हुआ कुछ ऐसा कि शुरू में क्या था, शुरू में जब आलिया भट्ट आए तो लोगों ने कहा कि अरे तुमने सीनियर को हटा के अब रिप्लेस करके आलिया भट्ट ले आए, कहाँ है ऐश्वर्या, क्यों नहीं आई, वो तो हर साल आती है। तो ये करके चलता रहा आलिया भट्ट को। तो मतलब वो वाली कंट्रोवर्सी के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं जो हुआ, वो चैप्टर क्लोज हुआ। उसके बाद जो है सबने कहा कि भाई जो ब्रांड जिनको रिप्रेजेंट करती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, उन्होंने जो है ये सही नहीं किया और ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो लेजेंड है, शी हैज बीन देयर डन दैट, हाउ कुड यू। और ये सारी बातें कब हो रही हैं, जब किसी को कुछ पता नहीं है बहुत ज्यादा इसके बारे में। जस्ट बिकॉज आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, आप बोल सकते हो तो आप बोलते हुए जा रहे हो। ये होते होते फिर वो वक्त आया कि ऐश्वर्या राय बच्चन फाइनली पहुंच गई कैन फिल्म फेस्टिवल अपनी बेटी आराध्या के साथ। नाउ नेक्स्ट चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसमें लोगों ने छोड़ दिया। सो फर्स्ट डे शी वोर दिस, उनका पहला आउटफिट जो था वो ब्लू कलर का एक गाउन था। दो एवरीबडी न्यू हु शी इज बिकॉज शी हैज अगेन बीन देयर डन दैट, बट लोगों ने फिर वो उंगली उठाई कि मजा नहीं आया, ड्रेस नहीं अच्छी है उसकी, अजीब सी ही लग रही है। फिर उसके बाद देन उन्होंने दो और ड्रेसेस चेंज किए। मैं तो उनके सूट वाली ड्रेस पे इतनी ज्यादा फिदा, मुझे तो इंस्पिरेशन ही आ गया कि भाई साहब ये मजा ही आ गया ये देख के। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लोग हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, क्योंकि दैट इज देयर थिंग, उनको बोलना है। जब वो नहीं थी तो तब बोल रहे थे, जब वो आ गई वो तब बोल रहे हैं। आई थिंक वी शुड ऑल बी लाइक ऐश्वर्या राय बच्चन, लाइक शी इज सो गुड, लाइक शी डजंट केयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आती है अपना काम करती है, शी इज गुड टू पीपल, शी इज ट्रीटिंग एवरीबडी वेल, शी इज डूइंग हर जॉब इन गेटिंग बैक। जब उनका मन होता है वो मीडिया के सामने आती है, जब उनका मन होता है नहीं आती है, लोग हजारों बातें करते हैं, वो अपना जिंदगी जीते हुए जा रही है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद इट, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ सेलिब्रिटी ऑफ एटलीस्ट दैट स्टैचर। भाई मजा ही आ गया, मजेदार। भाई और कुछ अगर आपने नहीं देखा है तो उनका सूट वाला ड्रेस देख के बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ ड्रेस बनाऊ, मैं इतनी ज्यादा फिदा हो गई। एंड शी इज लुकिंग सो नाइस इन दैट, लाइक फाइनली टू बी ऑनेस्ट, अगर गॉसिप वाले साइड में आए तो फैशन जिन्होंने भी उनके डिजाइनर है उन्होंने फाइनली दैट पर्सन डिड जस्टिस टू यू नो हाउ टू मेक हर लुक द बेस्ट। Well, good evening. ये सिर्फ मेरे ख्यालात हैं, बाकी आप बिल्कुल यू आर फ्री टू से एनीथिंग यू वांट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। भाई गाने रिक्वेस्ट कर दो अच्छे अच्छे, है ना, 9151896 पर।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: सिंगापुर में रहते रहते कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या क्या करें हम, कहे हाय गर्मी कि नहीं कहे हाय गर्मी। बट गुड यार, आई एम द हैप्पीएस्ट प्लैनेट ऑन दिस पर्सन व्हेन इट कम्स टू सिंगापुर का वेदर। मैं बहुत खुश हूँ भाई। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 5:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। चलिए आइए आपको सिंगापुर की सड़कों का हाल चाल फिलहाल बताया जाए। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन KJE टुवर्ड्स BKE बिफोर सिंगर तेंगा, अवॉइड करें लेन नंबर 3। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन CTE, अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स SLE आफ्टर मोलमेन रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 4। एक और एक्सीडेंट की खबर ऑन PIE टूवर्ड्स ट्वास आफ्टर एडम रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। प्लीज ध्यान से जरा सा गाड़ी चलाए, होश जोश दोनों को काबू में रखे, सीट बेल्ट जरूर पहने, आगे बैठे हो पीछे बैठे हो कैब में बैठे हो जहां पर भी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अगर आप चलते चलते इंजॉय कर रहे हैं पेडेस्ट्रियन है तो फिर अगर आपके कान में एयरपॉड्स या हेडफोन्स है, जस्ट कीप वन ऑफ योर ईयर ऑलवेज ऑलवेज ओपन व्हेनेवर एंड व्हेरेवर यू आर, अनलेस यू आर इन योर घर का रूम एंड यू जस्ट वांट टू बी बाय योरसेल्फ, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। सो वेल, इसी बात के साथ चलिए खूबसूरत सा गाना और सुन लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ये गाना प्ले करते आपको okay, यार मजा आ गया यार। ऐसे गाने प्ले होने चाहिए, इसीलिए तो अंशा हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि तुम ही अच्छे गाने चलाते हो। नहीं, ये गाना एक्चुअली जेन्युइनली अच्छा है। लेट्स गो।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले
1: वाओ लेट्स टॉक अबाउट इट. आजकल कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस जा रहे हैं, बड़ा बिजी चल रहा है हमारा कोर्ट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ 5:38 हो चुके हैं, नहीं 39 हो चुके हैं बात करते करते बाय द स्टूडियो क्लॉक. भाई कुछ ऐसा है कि हाल ही में वरुण धवन की एक मूवी के बारे में बात काफी चर्चा चल रही है. द मूवी नेम इज है जवानी तो इश्क होना है. नाउ यू नो दैट ये जो पूरा इतना लंबा जो है 36 मीटर लॉन्ग टाइटल है, ये एक गाने का जो है पार्ट है जवानी तो इश्क होना है. वी ऑल नो दैट राइट. तो हुआ कुछ ऐसा, हम इट इज दी ट्रेंड ऑफ रिक्रिएटिंग ऑल दोज ओल्ड क्लासिक्स. ठीक है, पुराने वाले उठाओ उसमें थोड़े नए बीट्स डालो एंड देन उसको रिक्रिएट. धुरंधर ऑल्सो डिड द सेम थिंग सो वी कैन नॉट कंप्लेन. तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने जो है सुन सुन बाबा एंड ये जो है बिल्कुल किया. एंड हाल ही में जब इसका ट्रेलर रिलीज का प्रमोशन हो रहे थे तो वरुण धवन एंड डेविड धवन एवरीबडी वॉज देयर, इवन सलमान खान वॉज देयर. एंड सलमान खान जो है उन्होंने ऐसा, नाउ ही सलमान खान इज अ टीजर ओके, उनको छेड़ना बड़ा अच्छा लगता है, वो उनको उनकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है. तो ही इज लाइक देखो ना वरुण ने मेरे ही वापस से दो गाने चुरा लिए, अब मेरे जैसे ही जो है उसको मेरे जैसे करना है तो अब क्या ही कर सकते हैं. एंड वरुण इज लाइक भाई प्लीज भाई छोड़ दो ना भाई.

0: म्यूजिक लॉन्च हो रहा, सॉरी थिएटरिकल ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, आम प्रेस पब्लिक सब बैठे हैं, उसके बीच में ये बोला जा रहा है कि हमारा सेटल हो गया, हमारी बातें हो गई है, हमारा सब कुछ हो गया। किससे बात हुआ? मैं ओनर हूं, मुझे तो अभी तक किसी ने फोन नहीं किया, कोई व्हाट्सएप नहीं, किसी ने इमोशनली लीगली इलीगली किसी ने कोई फोन नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया देश में। एक कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसके बाद भी खुला झूठ बोला जा रहा है, खुला रिलीज कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना कि शादी की कोई बारात चल रही है। Really, God bless everybody.
1: Ooh, yeah, so it went that way. And he clearly, हमारे प्रोड्यूसर साहब काफी काफी नाराज जो है बिल्कुल नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सो आई डोंट नो उसके बाद अब इस क्या हुआ है, बस इतना पता चला है दैट मूवी को और भी थोड़ा डीले मिल गया है, बिकॉज ऑब्वियसली इन सब चीजों में पड़ेंगे तो फिर ये सारी चीजें डीले होंगी। सो लेट्स सी जैसा जैसा जो जो होता हुआ जाएगा, हमारा तो काम है आपको बताना, अपडेट कर दिया हमने, वी शैल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस एज वेल। म्यूजिकल ब्रेक लें सर, बहुत इंटेंस हो गए हैं। गुड इवनिंग।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो। वेलकम बैक कर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस भाई यहां पर जो है मिस अतवारो ट्यून इन कर चुकी हैं और वो मुझसे कह रही है सुना मैंने कि फ्राइडे को तुम जिम गई थी शाम के टाइम पे। हां जी इस बार जो है मैं भाग गई मैं पहले भाग गई मैं ऐसी भागी फिर उसके बाद मैं आज सुबह सुबह ही नजर आई हूँ तो फिर यस आई डिड दैट आई एंजॉय दैट एज वेल। मैंने शो भी सुना मजे भी आए एकदम पार्टी हो गई नहीं वेल मैंने ये भी सुना कि जय सजना इज बैक नए नए गाने भी उन्होंने एंट्री मार ली है विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरा जो गाना है वो भी होना ही चाहिए बट वेल उस बारे में किसी और मतलब कोई ना कोई ऐसा फ्राइडे तो वापस आएगा ही ना जहां पर मैं भी शाम को कोई पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है हो ही सकता है राइट तो फिर तब देखा जाएगा। यहाँ पे सपना आंटी इज सेइंग एंड शी हैज बीन वॉचिंग सम रियली गुड मूवीज एंड इट इज अ गुड थिंग कभी कभी रैंडमली ऐसी मूवीज देखना इट्स सच अ गुड स्ट्रेस बस्टर। सो वेल आपने लास्ट कौन सी मूवी देखी दैट्स माई क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू। निकिता लास्ट कौन सी मूवी देखी थी जस्ट लाइक दैट रैंडमली नॉट एनी न्यू वन अगर नई भी देखी थी तो वो भी बता दो बट ऐसी पुरानी जैसे उठा के कभी कभी नहीं होता है हम लोग बैठे हुए होते हैं एंड कुछ लगाते हैं है ना एंड आई डोंट एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड ऑल बिकॉज ना कोई पुरानी मूवी उठा के आपने देखी हो सो विच वॉज दैट वन पुराना मूवी विच एफ I recently watched पुरानी ही है but it's one of my all time favorites बावर्ची मूवी राजेश खन्ना साहब की जो मूवी है वो देखी and it's such a beautiful movie man it's such a nice and इतना सही लगता है ना उस मूवी को देखकर कितनी सारी बातें कितनी सिंप्लिसिटी के साथ उस मूवी में कह दी गई है एंड आई ऑलवेज ऑलवेज क्या क्या सिनेमाटोग्राफी है क्या सिंप्लिसिटी है उसमें क्या इनोसेंस है और क्या बात है। आई मीन आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम सो व्हेनेवर आई फील दैट देयर इज टू मच हैपनिंग इन बॉलीवुड मूवीज आई गो बैक टू दीज सिंपल मूवीज एंड सत्यजीत रे साहब की मूवीज वगैरह में चली जाती हूँ पर यू नो सिंप्लिसिटी वॉज एट इट्स बेस्ट just wanted to share that feeling with you so you tell me that which was the last movie you kind of rewatched just and you really had a good time while you think about that let's oh nice dik chik wala gana coming up next on radio masti 24/7 live stay tuned with me

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: 6 बजे के उस पार स्वागत है आप सभी का रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ। 6 बजकर हो चुके हैं 6 मिनट। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है। अब क्या है ना कि चलो गॉसिप करते हैं। सेलिब्रिटीज जब बाहर जाते हैं और किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए जाते हैं, भाई अब एक तो वो सेलिब्रिटी है तो उनकी जबान से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो हाल ही में हमारे साउथ के एक्टर रामचरण की अगर मैं बात करूं, उनसे एक मेजर मिक्सअप हो गया। ओके, एंड यू नो हाउ अनफॉरगिविंग इंटरनेट इज। उसके बाद से जो मीम फेस्टिवल शुरू हुआ है इंटरनेट पे, उसके बाद उसका जवाब भी उनको मिल गया है। बट लेट मी स्टार्ट विद दैट एक्चुअली हुआ क्या। तो प्रमोशनल एक्टिविटी थी, हमारे रामचरण साहब जो है वो पहुंचे हुए थे, तो उनसे पूछा गया, उनके उन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जा रहा था। तो हमारे क्रिकेटर जो है जसप्रीत बुमराह, या द बोलर, जिनकी बोलिंग तो मतलब क्लास एक्ट, राइट, तो उनके बारे में पूछा गया तो जवाब जो है वो कुछ ऐसा आया।
2: एंड जसप्रीत बुमराह,
3: जसप्रीत बुमराह जी, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई लव फुटबॉल, एंड आप फुटबॉल को इतने आगे बढ़ा रहे हो, लव यू सर।
4: हमारे बिहार के लोगों को, बिहार के लोग, मेरे साथ हो आप।
1: ओके, आई टेल यू व्हाट, एक तो ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह को द funny part was that he initially said, sir, I'm a big fan of yours, okay, and then he said that, you know, football mein aapne ek bahut acha kaam kiya hai, where of course he's a cricketer. Fir uske baad ye jo activity thi, he was not doing in Bihar, wo Bhopal mein the jahan pe ye chal raha tha, and he's saying ki I love Bihar, and kaun kaun hai yahan par, who all loves Bihar, raise your hand, and everybody went like, sir, सर सर सर सर सर, समझ नहीं आया सर, सर ये क्या चल रहा है सर। एंड आई कैन नॉट इवन स्टार्ट माय रिएक्शन ऑन द कमेंट सेक्शन व्हिच वेंट बर्जर्क आफ्टर यू नो दिस हैपेंड। बट जसप्रीत बुमराह साहब जो है, उन्होंने भी जब उनका इट ट्रैवल सो फास्ट, राइट, सो ही गॉट टू नो दैट इस तरह से किसी ने उनको फुटबॉलर बुला दिया एंड एवरीथिंग, एंड ही ऑल्सो हैड अ एपिक कमबैक। अपेरेंटली इसको कहा जा रहा है कि ये एक फेक स्क्रीनशॉट है जो कि वायरल हो रहा है, बट ही सेड दैट इट्स ऑल राइट टू रामचरण, ही सेइंग इट्स ऑल राइट यश भाई, आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ योर्स, ईगरली वेटिंग फॉर टॉक्सिक। Yeah, so he just kind of did what he did. So yeah, I don't know. अब एक तो ये भी नहीं पता, देखो the interview was real, but this was fake or not, उसका जवाब I have no idea. So if reports are to be believed, तो ऐसा कुछ हुआ है। But sir, रामचरण sir, कितना जरूरी होता है words का choice and चयन जिसको कहते हैं। रेडियो जॉकी से आप पूछे, इसीलिए हम आज अकेडमी खोल रहे हैं कि भाई हम आपको बताएंगे कि इट इज नॉट दैट इजी, व्हेन यू टॉक यू हैव टू मेक सेंस, यू जस्ट कैन नॉट टॉक ऐसे कुछ भी नहीं। एनीवेज, दिशा जो हमारी है, चाहिए सोचना सुनकर मेरे, मतलब मैंने जिक्र ही किया था, सेंटी हो गई, कहते अब तो चला दो, अब तो पूरा चलाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे, हम पूरा चलाएंगे गाना, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस है भाई, आपने कहा हमने प्ले किया, ये लो जी।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy Alukas.
4: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
6: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
7: अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा भाई, जब प्री प्लानिंग का मौका मिल रहा हो और मैंने आपको ऐसे हिंट दे दिया हो तो फिर कर लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू जॉया लुकास एंड आई वाज लाइक ओ यस ओ यस। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, 6:00 हो चुके हैं 21 मिनट। मैं हूं अंतरा आपके साथ। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है आप सुन रहे हैं, और दिस सीजन आपकी चॉइस ऑफ ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए जॉया लुकास वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर्स के पास। वाई? बिकॉज ऑफ दिस 40% वाला डिस्काउंट जो कि चल रहा है। 40% ऑफ आपको मिल रहा है ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड या डायमंड या पोल की या प्रेशियस ज्वेलरी जो है। उसी के साथ साथ 100% वैल्यू मिल रहा है ऑन डायमंड एक्सचेंज। आई मीन वाओ, प्री प्लान मतलब त्योहार आने से पहले ही अगर कोई आपकी एकदम तैयारी करा दे तो आप क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जब त्योहार के टाइम पे ना प्राइसेस वगैरह वैसे भी इतने बड़े हुए हैं बट और बढ़ जाते हैं एंड फिर हमें लगता है कि नहीं इस बार रहने देते हैं। शायद कभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजाइन पसंद बहुत आ जाता है बिकॉज इट्स जॉया लुकास, बट देन फिर आपको लगता है कि मे बी नेक्स्ट टाइम। प्री प्लानिंग, आप अभी जाके इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 जून तक वैलिड है। सो यस, यू विल हैव टू जस्ट एक्ट फास्टर ऑन दिस। सो 412-134 या 320 सरंगुन रोड, इनमें से किसी भी एक आउटलेट पे जाएं एंड इस वक्त उनके चल रहे इस ऑफर का 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस का फायदा पूरी तरह से उठाएं। आई टेल यू, मैं तो सारे अच्छे फायदों वाली बात करती हूँ, वही बताती हूँ, और जो ले जाते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले जाते हैं तो फिर रह जाते हैं। तो मैं रह जाने वालों में से, तुम करना मत आज ही क्या तो प्लान कर लो, अभी तो 14 जून तक का टाइम है बट उससे पहले कर लो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना। गुड इवनिंग।

वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन आपके साथ. यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आखी चॉइस. एंड भाई ये क्या ही चल रहा है इस दुनिया में या बॉलीवुड की दुनिया में, चलिए बताते हैं. भाई रणवीर सिंह जो हमारा है ना, फॉर ऑल द धुरंधर फैंस एंड लवर्स एंड एवरीबडी एंड यू नो he is going places, okay? Places मतलब now King Khan is the place he is going. Too good. So वही अगर reports की माने जाए तो शाहरुख खान की much awaited film जो है King, it has this major addition अपने star studded cast में. So कहा जा रहा है रणवीर सिंह is expected to make this special cameo appearance सिद्धार्थ आनंद की इस directorial venture में. अब report ये कह रही है कि रणवीर will play this mysterious character in the film and he's set to appear in this crucial sequence. वहां पे he hands over a confidential document to सुहाना खान का character, helping her navigate the dangerous situation safely. Okay, all right, रणवीर dude, You just did it, bro. Like, totally with you on this. When you are riding, ride high. Tera time chal raha hai, tu kar. Bhai, puri achhi tarah se kar. Now, this movie King anyways has amazing star cast, right? Unki khud ki biwi usme hai. Deepika Padukone is there. Abhishek Bachchan is there. Rani Mukherjee, Arshad Varsi, Anil Kapoor. So, yeah, I think the buzz around King, it's just growing stronger and stronger. Do. I am all up for ensemble star cast. Give me a good script and a movie, I am all up for it. And especially now with Ranveer Singh riding high and in it, not bad. देखते हैं क्या होता है आगे. बट वेल देयर इज अनदर मूवी व्हिच इज कमिंग विद द एंसेंबल स्टार कास्ट, यू नो दैट, लाइट वेलकम टू द जंगल. चलो उसी का गाना जो है वो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे लग रखा है, वो सुन लेते हैं. इस गाने का सबसे फनी एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज दैट आलू ले लो. दे हैव वो एपिक डायलॉग उठाया है, उन्होंने गाने में डाल दिया है. इट इज सो फनी. एवरी टाइम आई लिसन टू इट आई ओनली स्माइल. ओके, वेलकम, लेट्स स्टार्ट द पार्टी, वेलकम.

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो।
1: हेलो, वो प्रियंका चोपड़ा भी आम घर ही है, बस आप ही लेकर रह गए हो। इतनी बार बोल दिया जीजी मार्ट से आम मंगा लो, टेस्ट कर लो, मजे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आप मुझे से पूछ रहे हो कि तुमने मंगाए हैं। मैंने कहा ऑफ कोर्स मंगाए, तभी तो बोल रही हूँ इतने टेस्टी आम है। और क्यों ना हो यार, इंडिया में जब सब और विदेश में बैठ के लोग सब अलग अलग जगह पे सेलिब्रिटीज भी जो है आम रिलीज कर रहे हैं, तो पूरा आपको भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम सभी का हक बनता है। वीडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्राइब के साथ यहाँ पर जो है चल रहा मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, एंड आम के लिए आपकी चॉइस होनी चाहिए जीजी मार्ट। ये तो हम कई दिनों से बोल ही रहे हैं, बट वाई जीजी मार्ट, नॉट ओनली मी, मेरे से तो आप कई बार सुन चुके हो, बट जिन्होंने ट्राई कर रखा है वो कुछ कहना चाहते हैं कि वाई ही से कि क्यों जीजी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम से जो है आम ऑर्डर करने चाहिए।
2: Hi, myself Yogesh. So I'm staying in Singapore for almost 6+ years. Compared to other market mangoes, GG Mart mangoes are next level. Super sweet, juicy, and full of Indian real mango flavor. I think I felt like a taste of home in every bite. So I would like to recommend to all other people to use GG Mart mangoes. So I ordered these mangoes online from ggmart.com, and those mangoes I ordered one day before, and next day evening I got the delivery, which is really awesome, which saved my time instead of go into market buy. So I think the delivery is quite fast, and so as I mentioned, this taste, quality and the delivery. So overall, my feedback is I would like to recommend to go with the GG Mart for the Indian Alfonso mangoes, the king of the mangoes.

0: That's right. अब आपने इनसे सुन लिया है तो मेरे से सुनने की ज्यादा बिल्कुल जरूरत है। जी जी माँ, तो ऑनलाइन जाए, अपने आप को रजिस्टर कराए एंड अपना स्क्रीनशॉट भी अगर मुझे भेज देंगे तो फिर हम कुछ डिस्काउंट कोड की बात कर लेंगे उधर। अगर वो नहीं चाहिए तो न्यू 10 वाला डिस्काउंट कोड भी आप डालकर बिल्कुल उसको अवेल कर सकते हैं एंड गेट योर मैंगोज टुडे फ्रॉम GGMartOnline.com, है ना, ये याद रखिए। अभी फिलहाल यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक एंड मिलेंगे 7 बजे के उस पर, बट मैं ऑफकोर्स आई विल बी राइट बैक, बट 7 बजे आएंगे हमारे IPL highlights लेकर जितेश। यस, आप highlights ले एंड देन अगेन आई विल बी राइट बैक ऑन मस्ती वॉइस। आपकी चॉइस, आपको टाइम दे रही हूँ, सोच के रखो कौन सा गाना सुनना है, ठीक है? एक ही घंटा बाकी है मेरे पास। अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू GGMartOnline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: That's right. A big thank you to Jitesh for the amazing IPL highlight he is bringing to us Monday to Friday. And yes, Radio Masti 24/7 live par Masti Boys aapki choice par Antra bilkul yahan par wapas aa chuki hai. Kal ki date mein Jitesh update isliye nahi dega because today there is no match. It's the final week of the IPL aur yeah, the matches kam hai is wajah se jo hai adjustment us according mein. But did you see that video of Sachin Tendulkar in the flight jab उनके बेटे ने जो है विकेट लिया वहां पे आईपीएल के ग्राउंड में एंड ही गॉट टू नो एक तो बिकॉज जो है उनके बेटे को पूरे सीजन जो है खेलने को नहीं मिला दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज गिवन जो है एलएसजी की टीम की तरफ से खेलने के लिए एंड ही टुक अ विकेट सो इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर सचिन तेंदुलकर ही टुक अ होल वॉक सबको उन्होंने ग्रीट किया सबने उनको बधाइयां दी एंड इट वाज जस्ट सच अ प्योर प्योर मोमेंट बट देन यस नाउ ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग दैट स्टेज जब यू नो टरन क्या होगा कौन लेकर जाएगा आईपीएल की ट्रॉफी सो वेल एक तो वो है जिसको सोच के क्रिकेट लवर्स इन सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं दूसरी दिल की धड़कनें बढ़ा रखी है हमारे सलमान खान ने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है भाई की जिंदगी में कुछ तो चल रहा है कुछ तो आपको नहीं लगता है I cannot keep a finger on what exactly is not right, but then something is happening. So, kuch time pe abhi pichle hafte, bhai was quite active, okay? And raat ke time specially, aur kafi naraaz bhi fir beech mein ho gaye. Pehle wo aaye, fir unhone badi hi ek sexy si photo dal di aur jo bata diya sabko duniya ko ki mere abs jo hai wo wapas aa chuke hain. Fir uske baad fir wo kahin pe gaye aur fir wo paparazzi se naraaz ho gaye. Fir unhone series of threads of ek ke baad ek kitni sari चीजें लिख डाली फिर उसके बाद सारे पेपराजी ने उनसे सॉरी बोला फिर उन्होंने सॉरी एक्सेप्ट भी कर लिया फिर वो दूसरे प्रमोशन में भी नजर आने लगे अब आप कहोगे कि अब इसके बाद क्या अब इसके बाद सडनली कुछ ऐसा हुआ दैट सलमान खान ऑल ऑफ अ सडन इंस्टाग्राम से गायब एज इन देर इज नो अकाउंट तो अगर बीइंग सलमान खान पे लोग गए तो देर वर जीरो फॉलोअर जीरो फॉलोइंग विच मीन्स ही हैड क्लोज्ड हिज अकाउंट फॉर सम रीजन ओके एंड देन अभी वो वापस आ चुके बट गए क्यों थे तो वापस क्यों आए अब कई सारे लोग कई सारी थ्योरी लगा रहे हैं कि यू नो हो सकता है कि अकाउंट बैन हो गया हो सकता है कोई बग आ गया हो या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा पक रहा है समथिंग लाइक दैट या फिर इट्स जस्ट अ पीआर स्टंट You never know. पता नहीं मैं तो सिर्फ ऐसे ही मतलब जब इतने सारे लोगों ने इतना सब कुछ मिल गया तो आई थॉट दैट ये वाला ऑप्शन भी इसी में ऐड हो जाना चाहिए बट देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग गोइंग ऑन समवेयर विद सलमान खान एंड हिज लाइफ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सून हमें पता चल ही जाएगा सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच राइट वो करते करते गाने सुन ले अच्छे अच्छे आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया दिस दिस रियली नाइस सॉन्ग विच हैज कम आउट मूवी का नाम है मैं वापस आऊंगा एंड ये गाना जो है इट्स क्वाइट नाइस इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग और बड़ा डिलाइटफुल सा ग्रूवी सा नंबर है इट्स कॉल्ड मस्कारा ओके एंजॉय इट एंड कम बैक इट्स अ न्यू ट्रैक

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
2: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस। You say, we play.

0: इट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग यू सी. अगर आप सोच रहे हैं कि ये रेट्रो गाना इस वक्त क्यों चल रहा है, दिस इज मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस, यानी कि आप यहाँ पे मुझे गाने रिक्वेस्ट करते हैं एंड आई प्ले दोस सॉन्ग्स फॉर यू. सपना आंटी की रिक्वेस्ट थी ये, एंड व्हाट अ टाइमिंग कि भाई रमेश जी के आते आते जो है उनका गाना यहाँ पे प्ले हो गया एंड हमारा रेडियो रोमांस ऑफ द डे सक्सेसफुल रहा. गुड गुड गुड जॉब अच्छा गुड जॉब. 7:30 हो चुके हैं यहाँ पे स्टूडियो क्लॉक में एंड भाई क्या आपके पास आप स्टिल इंडिया के पासपोर्ट होल्डर हो? अगर जवाब है हाँ तो बिल्कुल सुनिए. क्या आप थाईलैंड जाना चाहते हो? तो अगर आपके उसमें भी जवाब में आता है हाँ, देन हैज दिस इम्पोर्टेंट अपडेट सारे के सारे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए. भाई थाईलैंड जो है उन्होंने ऑफिशियली रिमूव कर दिया है इंडिया को फ्रॉम द 60-डे वीजा फ्री एंट्री के कैटेगरी से. दैट इज करेक्ट. इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स विल नाउ नीड अ वीजा ऑन अराइवल टू एंटर थाईलैंड. ये जो नए रूल्स हैं, The stay is allowed up to 30 days. Visa on arrival काफी है कुछ 2000 थाई बाद. Passport must be valid for 6 months. Return flight ticket जो है वो required होगा. Hotel या Airbnb का proof mandatory होगा. Proof of funds is also needed. अभी भी काफी सारे travelers हैं जो ये सोच रहे हैं कि visa free entry जो है Thailand में active है because they are Indian passport holders and they are finding it out only when they are reaching the airport over there. So yes, इसीलिए हमारी update से बिल्कुल वास्ता रखे सो दैट वी कीप यू पोस्टेड ऑन दैट राइट. सो या यू हैव टू गेट वीजा ऑन अराइवल नो मोर देन 60 डेज वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस इन थाईलैंड. Telling for all those people who have been planning for the long, long weekend, जो उन्होंने plan तो कर ही रखे होंगे, है ना? इसमें तो कोई दोराय नहीं है. सभी यहाँ पे planning के aces बैठे हुए हैं, नहीं? Radio Masti 24/7 live पर फिलहाल. या हमने भी plan कर रखे हैं. गाने coming up next. Radio Masti 24/7 live.
1: जगाती है कयामत कोई

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Shahi Maharani for the special treat.
4: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
5: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
4: Thank you.
6: Thank you.
5: Thank you.
3: Thank you. We love you.
1: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: Aapke hits, aapki playlist aur hamara thoda sa mirch masala. Masti voice, aapki choice. You say, we play.
8: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहाँ पर आपके साथ और चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। और बस बात करते करते एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई एंड ऑफकोर्स मेरा दोस्त चुप बोलेगा तो वो जरूर प्ले करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू प्ले दैट, बट जस्ट इन अ व्हाइल। उससे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने श्रेया का गाना प्ले किया, फिर वही रात है, एंड इट्स सच अ, यू नो, इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज। और गानों की एक खासियत होती है दैट जब भी आप कोई पर्टिकुलर गाने से रिलेट करते हो तो वो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो कर देती है। वैसे ही वही वाली मेमोरीज जो आप किसी जगह पे जाते हो तो वहां पर भी बनाते हो, एंड एवरी टाइम यू गो टू दैट प्लेस फॉर अ डिनर और समथिंग, याद है लास्ट टाइम हमने ऐसे किया था, याद है एक बार हमने यू नो अपना एनिवर्सरी यहाँ पे कितना स्पेशल था, मॉम डैड यहाँ पे आए हुए थे, एंड वी दीज थिंग्स हैपन। प्लेसेस एंड सॉन्ग्स दे हैव दिस अमेजिंग क्वालिटी टू देम टू ब्रिंग बैक दोज मेमोरीज, एंड इफ देर इज अ स्पेस हु हैव done it for a very good long time, who have given us such memories like Shahi Maharani, yes, they are completing their 25 saal ho gaye unko hamari memories banate hue khane ke saath. Food is such a beautiful thing, right? Ghar pe nahi bana ke jab hum log pure family ke saath bahar Shahi Maharani mein khana khane jate hain, and we talk, we laugh, we end up, you know, revealing secrets at times on that Shahi Maharani ka dinner table, and you know, having me and Renuka aksar hum log kitna matlab ha ha hi karte hain on papri chaat. Well, it's one of our favorites. It's a must. Hum dono kabhi bhi saath mein Shahi Maharani chahte, we always order papri chaat over there, and jalebis. Yes, I love their jalebis. It's just, I think they are the best. So yes, Shahi Maharani jo hai 25 saal pure kar raha hai, and of course 25 saal mein they are doing something really really special. So celebrating their 25 years of culinary heritage at the Raffle City,

वो कह रहे हैं कि एक एक स्पेशली क्यूरेटेड एनिवर्सरी एक्सपीरियंस जो है इट इज गोइंग टू फीचर देयर मोस्ट आइकॉनिक सिग्नेचर नॉर्थ इंडियन डिशेस एट द सेलिब्रेटरी प्राइस ऑफ $25 प्लस प्लस. दैट इज करेक्ट. अभी से शुरू करके 30 जून तक जो है ये ऑफर चलने वाला है. इट्स अ लिमिटेड टाइम. दे आर शोकेसिंग द सिग्नेचर क्लासिक डिशेस शाही महारानी के, जो कि जिस जिसने एक एक लेगेसी डिफाइन की है शाही महारानी के, जो है जर्नी का एक अहम हिस्सा बने रहे हैं. इट्स टाइम टू ऑनर देम एंड ऑफर देम टू ऑल ऑफ अस. जैसे मुर्गी टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला, देन पालक पनीर, शाही सब्स सिजलर. सो दे आर ओरिजिनली प्राइस्ड फ्रॉम $32 प्लस प्लस एंड अबव, बट इस वक्त जो है एनिवर्सरी प्राइस जो है $25 प्लस प्लस में होगा. बट देयर इज अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड एज वेल ओवर हियर. एक तो 30 जून तक है, देन देयर हैज टू बी अ मिनिमम स्पेंड ऑफ $100 प्लस प्लस पर टेबल. दिस इज अवेलेबल फॉर डाइन इन ओनली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. और किसी प्रमोशन के साथ इसको आप बिल्कुल नहीं इंक्लूड कर सकते. दिस इज अ स्टैंड अलोन प्रमोशन विच इज गोइंग ऑन. सो रिजर्वेशन कराएं shahimaharani.com पर जाएं, या फिर 6235-8840 यू कैन गिव दम कॉल एंड रिजर्व योर टेबल एंड मेक मोर मेमोरीज, बिकॉज दे हैव गिफ्टेड अस रॉयल एंड शाही मेमोरीज. सो इट इज आवर टाइम टू गो एंड रीलिव दोज मोमेंट्स विद शाही महारानी कंप्लीटिंग देयर 25 ईयर्स द नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट. अमेजिंग. आई थिंक बात करती हूँ मेरे नुका से. इट्स हाई टाइम दैट वी बोथ ऑल्सो रिविजिट शाही महारानी. या लेट मी टॉक टू.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस अब होने वाला है खत्म. जाते जाते मैं जो है आदित्य का जो है मेरा दोस्त उसका गाना छोड़ के जाऊंगी बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इट विल काइंड ऑफ काम डाउन द होल डे व्हाट हैज बीन. जो भी है एकदम ऐसा कुछ कुछ गाने होते हैं ना एकदम सुकून सा दे जाते हैं. आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स अगेन ऑफकोर्स धुरंधर के साउंड ट्रैक से. सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम कल मिलते हैं. हम तो बस कुछ घंटे की दूरी पे है. वापस कल सुबह आपसे मुलाकात होगी. फिर पस्से का मंत्रा ओनली विद आंसर राम. फिलहाल के लिए यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड. चाहिए खाना वाना खाइए ऐश करिए स्पेंड सम क्वालिटी टाइम एंड या स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. बाय बाय टेक केयर एंड गुड नाइट.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर। स्वागत है आप सभी का यादों का कारवा में, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जो है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। और आज हमारा कारवां गुजरेगा सिंगापुर 1979 के साल से। 1979, ये वो साल था जब दुनिया के सबसे बड़े डांसर और पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने अपना पहला ब्रेक थ्रू एल्बम लॉन्च किया था, ऑल द वॉल। ये वही साल था जब चाइना के संविधान में वन मेंबर इन वन फैमिली का नारा दिया गया था पॉपुलेशन कम करने के लिए। और भी बहुत कुछ हुआ था दुनिया भर में। हिंदुस्तान में कई फिल्में बनी इस साल, लेकिन मुझे आज सबसे पहले जिस फिल्म का नाम याद आ रहा है वो है गोलमाल। और वो कहते हैं ना कि हंसते हंसते पेट में दर्द होने लग जाता है, जी अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो सच में आपके साथ ऐसे ही हो जाएगा। हिंदी सिनेमा में अगर बेहतरीन कॉमेडी फिल्म्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये फिल्म जरूर जरूर उस फेहरिस्त में होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फिल्म छूट जाए। बेहतरीन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का जबरदस्त निर्देशन, NCCP के प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी तो जाहिर सी बात है गुलजार साहब होंगे उनके साथ। तो जी गुलजार साहब ने गाने लिखे और पंचम दा ने म्यूजिक दिया, जो बेहद कमाल का था। अमोल पालेकर, द ग्रेट एक्टर उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी इस फिल्म में मेन कैरेक्टर कर रहे थे। अच्छा, बिंदिया गोस्वामी का इस फिल्म में होने का भी एक किस्सा है। ऋषिदा पहले रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि इस फिल्म में वैसे भी मेल एक्टर्स का ज्यादा काम है तो इतनी टैलेंटेड एक्टर का टैलेंट बेकार चला जाएगा। सो उन्होंने रेखा की जगह बिंदिया गोस्वामी जी को ले लिया। इनके अलावा देवेन वर्मा है फिल्म में, डेविड है, यूनुस परवेज, दीना पाठक और शोभा घोटे, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें गेस्ट अपीयरेंस में, जैसे अमिताभ बच्चन साहब, लता मंगेशकर, रेखा, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी। फिल्म में होता कुछ यूं है कि अमोल पालेकर, जो कि राम प्रसाद हैं, वो एक पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन नौकरी नहीं है इनके पास। तो यहाँ इनके अंकल आते हैं डेविड, वो बताते हैं कि भवानी शंकर के यहाँ तुम नौकरी कर लो, मेरा दोस्त है। लेकिन भवानी शंकर जो है ना उत्पल दत्त साहब, उनको मॉडर्न टाइप के लड़के अच्छे नहीं लगते, उन्हें लगता है कि बिना मूछों वाला इंसान चरित्रहीन होता है। खैर साहब, राम प्रसाद मूछें रखते हैं और भवानी शंकर से मिलने जाते हैं, उन्हें इंटरव्यू में इंप्रेस कर देते हैं और उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। फिर एक दिन भारत और पाकिस्तान का हॉकी मैच हो रहा होता है, उसे देखने जाना होता है राम प्रसाद को, और वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें देखने जाने की बात कहकर छुट्टी लेकर बीच में मैच देखने चले जाते हैं। लेकिन वही हॉकी का मैच देखने भवानी शंकर भी आ जाते हैं और उसे वहां पर देख लेते हैं। और फिर इस झूठ को बचाने के लिए राम प्रसाद को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, यही इस फिल्म का कंटेंट है, जो बेहद कमाल का है। एक गाना जो बार बार बजता है वो है टाइटल ट्रैक, गोलमाल। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। इसके अलावा गुलजार साहब का लिखा हुआ फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग गाना है आने वाला पल जाने वाला है, सुपर्ब। उत्पल दत्त को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1979 की सबसे बड़ी फिल्म थी ये सक्सेस के मामले में। और एक खास बात यह कि ये फिल्म सिर्फ 40 दिन में शूट हो गई थी। तो आज शुरुआत इसी फिल्म के गानों से करते हैं। आप लीजिए लुत्फ इन गानों का। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दीज सॉन्ग्स, स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद मी समर, ओनली ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। और यादों का कारवां में आज हम बात कर रहे हैं 1979 की फिल्मों की। सिंगापुर अगर 70 के डेकेड की बात करें तो आप इस दौर की फिल्मों में देखेंगे कि आपको कई फिल्में ऐसी मिलेंगी जिनमें एक लंबी कास्ट होती है एंड म्यूजिक बड़ा होगा। मतलब जहां एक तरफ एक्शन फिल्में बन रही थी और साथ कॉमेडी भी, वहीं इस साल एक ऐसी फिल्म भी बनी जो इस जॉनर से अलग थी और वो थी जानी दुश्मन। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त, जितेंद्र, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, रजा मुराद, नीतू सिंह, रेखा, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, बिंदिया गोस्वामी, प्रेमनाथ जैसे लगभग 20 से ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स की कास्ट थी। फिल्म में होता यूं है कि ज्वाला प्रसाद जो कि रजा मुराद हैं, उनकी शादी होती है। दुल्हन ने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ होता है। ये लाल जोड़ा इस फिल्म का मेन कंटेंट है और शादी के पहले दिन रात को उनकी बीवी उन्हें दूध में जहर मिलाकर मार देती है। इसके बाद ज्वाला प्रसाद शैतान बन जाते हैं और उन्हें लाल जोड़े से नफरत हो जाती है और जब भी कोई नई दुल्हन लाल जोड़े में आती है तो वो उसे उठाकर ले जाते हैं और मार देते हैं। फिर एक दिन एक नई दुल्हन को उठा ले जाता है लेकिन इस बार दूल्हा उस शैतान को मार देता है, लेकिन शैतान मरे हुए आदमी से निकलकर उस दूल्हे में आ जाता है और फिर वही कहानी चलती रहती है। बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है जो ऑडियंस को बांधे रखती है। अडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट मिला था इस फिल्म को, बच्चे नहीं देख सकते थे, हमने भी नहीं देखी उस दौरान। और फिर देखिए सिंगापुर समर, झूठ नहीं बोलेगा आपसे, मुझे ना हॉरर फिल्मों में डर लगता तो लगता भाई इसमें क्या है। ऐसा थोड़ी होता है कि हर मर्द को डर नहीं लगता, डर तो लगता है, दर्द भी होता है। ये सब फिल्मों की बात है कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो कुल मिलाकर लौटते हैं इस फिल्म पर। राजकुमार कोहली साहब ने इसे डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया, वर्मा मलिक ने इसके गाने लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका म्यूजिक दिया जो बहुत ही शानदार था। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया हो, और एक और गाना था चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रोताई। ये वो गाने हैं जो बेहद हिट हुए थे इस फिल्म के। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर जी क्या कहते हैं आप, दोनों सुनवाएंगे या आपकी मर्जी है जो भी सुनवा दीजिए, लेकिन इसी साल के गाने सुनवाइएगा। और आप लोग सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: केजी आटा।
1: हाँ जी जी।
0: आधा केजी मसूर दाल।
1: जी जी।
0: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: यादों का कारवां में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ समर, रेडियो 24/7 लाइव पर। अच्छा, आज हम 1979 की बात कर रहे हैं, 1989 की। 1989 में आपकी भी तो कोई याद रही होंगी, हमसे शेयर कीजिए ना हमारे फेसबुक पेज पर आकर। चलिए अभी तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली फिल्म की तरफ, जो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। फिल्म का नाम है काला पत्थर। ये एक डिजास्टर ड्रामा फिल्म है जो हिंदुस्तान के एक राज्य झारखंड के चेसनाला में स्थित एक कोयले की खान में पानी भर जाने पर आधारित है, जिसमें करीब 372 लोगों की जान चली गई थी। इस कहानी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे उस दशक के सबसे हिट राइटर सलीम और जावेद साहब ने। उस टाइम के हिसाब से दिस वॉज एवरेज एट बॉक्स ऑफिस, लेकिन वो होता है ना, कई फिल्में जब रिलीज होती हैं तब वो उतनी नहीं चलती, उतनी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन बाद में बहुत हिट हो जाती हैं। तो ये फिल्म भी कुछ ऐसी थी, जैसे मेरा नाम जोकर के साथ हुआ था। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई तब ये फ्लॉप थी। शोले के साथ भी ऐसा ही था पहले वीक में, लेकिन देखिए बाद में क्या इतिहास रचा उसने। लेकिन बाद में लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और ये फिल्म सक्सेसफुल भी हो गई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं जो एक नेवी ऑफिसर होते हैं, लेकिन 300 लोगों से भरे जहाज को छोड़कर वो भाग जाते हैं। बाद में इसी कायरता के लिए वो समाज में भी बेइज्जत किए जाते हैं, सबसे आखिर में शिप छोड़ता है। लेकिन इस कैप्टन पर आरोप है कि इसने पहले ही शिप छोड़ दिया था। उनके पापा भी उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते उनकी इस कायरता के चलते। ये बार बार कायरता वाला ख्याल अमिताभ बच्चन साहब को परेशान करता है। वो एक कोयले की खान में काम करने चले जाते हैं जहां उन्हें कोई पहचान ना सके। शशि कपूर भी है इस फिल्म में, इसी कोयले की खान में वो इंजीनियर हैं। साथ में शत्रुघ्न सिन्हा है जिनका फिल्म में नाम है मंगल, लेकिन पुलिस से बचने के लिए इस खान में काम करने आ जाते हैं। सिंगापुर उस दौर की फिल्में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, उस दौर में किसी डाकू के किरदार का नाम ज्यादातर मंगल ही होता था। खैर साहब, मंगल कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों पर कभी कभी जुल्म करते हैं, जिसके लिए अमिताभ और मंगल की लड़ाई भी होती है। एक सीन में आप देखिएगा, अमिताभ बच्चन भाग कर आते हैं और उछल कर मंगल को लात मारते हैं। ये सीन बिना किसी प्रोटेक्शन के किया गया था, हाज तो नीचे गद्दे लगाकर किया जाता है। और अमिताभ फेमस भी थे खुद के असली स्टंट करने के लिए। और प्रेम चोपड़ा साहब इस खान के मालिक है। फिल्म में एक विलेन भी तो होना चाहिए, वो भी है यही प्रेम साहब। इनके अलावा राखी है, नीतू सिंह है और परवीन बाबी भी है। म्यूजिक इसका राजेश रोशन साहब ने दिया है, जो बहुत ही मस्त है, मतलब बहुत ही कमाल का है। शशि जी पर फिल्माया गया गाना, वो जो गाना है वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रोमांटिक गाना भी है, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, आई लाइक इट, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। साहिर लुधियानवी जी ने इसके गाने लिखे हैं, जबरदस्त हिट फिल्म है ये, भाई मेरी तो फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अब आप इसके गाने सुन लीजिए, आप भी डिसाइड कर लीजिएगा, जब भी मौका मिले ये फिल्म जरूर जरूर देख लीजिएगा। एंजॉय कीजिए इन गानों को। यादों का कारवां सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर समर के साथ।

या सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, यादों का कारवां चल रहा है यहाँ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर सिंगापुर। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज 1979 की हिट सुपर हिट फिल्मों की। ऋषि कपूर साहब की इस साल 3 फिल्में आई, लेकिन सरगम जिसके अब हम बात करने वाले हैं, ये फिल्म इस साल जबरदस्त हिट रही। फिल्म स्टोरी के साथ साथ इसका म्यूजिक और भी जबरदस्त था। कमाल का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, जिसके लिए इनको बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस साल। डायरेक्टर के विश्वनाथ ने इसे डायरेक्ट किया और लिखा भी। यह फिल्म के विश्वनाथ की बनाई हुई तेलुगु मूवी श्री श्री मुव्वा का रीमेक थी, जिसमें जया प्रदा थी जो एक म्यूट डांसर का रोल प्ले करती हैं, और इस फिल्म के बाद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो स्टार बन गई थी। तो जब इस फिल्म को उन्होंने हिंदी में बनाया के विश्वनाथ साहब ने, तो इस फिल्म में भी जया प्रदा को लिया उन्होंने, और यहाँ भी जया प्रदा ने वही रोल प्ले किया और यहाँ भी वो इस फिल्म के बाद स्टार बन गई। ऋषि कपूर जया प्रदा के अलावा इस फिल्म में शक्ति कपूर हैं, अरुणा ईरानी हैं, असरानी हैं। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि जया प्रदा बोल सुन नहीं सकती हैं, उनका नाम हेमा है। वो अपने फादर जो कि एक स्कूल टीचर हैं, अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती हैं। माँ और बहन इन पर अत्याचार करती हैं और इनकी पैसों के बदले किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी करा देना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच, जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता ही है, हीरो की एंट्री होती है। ऋषि कपूर जो कि एक डफली वाले हैं, वो हेमा का फेवर करते हैं और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिल्म के सारे गाने खूब जले, खास करके डफली वाले डफली बजा। इस गाने को फिल्म फेयर भी मिला और ये गाना 25 हफ्ते तक बिना का गीत माला में टॉप पोजीशन पर भी बजता रहा। इसके अलावा कोयल बोली दुनिया डोली, ये भी खूबसूरत गाना है, और वो राम जी की निकली सवारी, ये भी जबरदस्त गाना है। तो भाई, इतने सारे खूबसूरत गाने लिखे आनंद बख्शी साहब ने, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा गाना सुनाया जाए। डफली वाले तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए, क्या कहते हैं आप? और इसके अलावा राम जी की निकली सवारी कर दें क्या? कंप्यूटर जी डिसाइड। बहुत ही कमाल ऑसम म्यूजिक है इसमें, आप भी डिसाइड कीजिए।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: सिंगापुर बातों बातों में वक्त कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। देखिए ना, हम बातें करते रहे और हम अपने इस शो के आधे पड़ाव पर आ चुके हैं, मतलब आधा शो अब खत्म होने को है। तो चलिए हम बातों बातों में बात कर लेते हैं 1979 की एक और फिल्म की। मैं समर हूँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। और जब मैंने कहा कि बातों बातों में हम बात कर लेते हैं एक और फिल्म की, तो बातों बातों में की क्यों ना बात की जाए। डायरेक्टर बासु चटर्जी ने इसे प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। मैं फिल्म बातों बातों में की बात कर रहा हूँ। अमोल पालेकर थे इसमें, टीना मुनीम थी उनके साथ, डेविड और पर्ल पदमसी थी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन गाने इसके बहुत ही ज्यादा हिट हुए। इसी साल अमोल पालेकर एक जबरदस्त हिट दे भी चुके थे, गोलमाल। ये फिल्म बासु चटर्जी की फिल्म थी और बासु चटर्जी की फिल्म में अक्सर फैमिली ड्रामा हुआ करती थी। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी है। इस फिल्म में पर्ल पदमसी जो की एक विधवा है, उनकी बेटी नैन्सी जो कि टीना मुनीम बनी है, और डेविड हैं जो पर्ल पदमसी के भाई बने हैं, वो उनके लिए रिश्ता लेकर आते हैं नैन्सी के लिए। और नैन्सी किसी अमीर इंसान से शादी करना चाहती है। एक दिन 9:10 पर वेस्टर्न रेलवेज की लोकल ट्रेन में, जो कि अंधेरी से चर्च गेट जा रही होती है, उसमें डेविड नैन्सी की मुलाकात टोनी ब्रिगेंजा यानी अमोल पालेकर से करवाते हैं। ये एक पेंटर है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। बस बातों बातों में फिल्म की कहानी कैसे घूमती है और कैसे इन दोनों में तकरार तक हो जाती है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। पर इतना तो मैं आपको बता ही दूं कि फिल्म की एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में 4 गाने हैं, जिसमें 2 गाने अमित खन्ना ने लिखे हैं और 2 योगेश साहब ने लिखे हैं। म्यूजिक राजेश रोशन साहब ने दिया, जो बेहद कमाल का है। उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजिया से गीत गाया करो। और एक वो सुनिए कहिए कहिए सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। और वो भी तो है, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। आई लाइक इट, बहुत ही बढ़िया गाना। एक और गाना सुनाऊं जो सीरियस है, किशोर कुमार साहब ने गाया, कब तक यूं मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। आई लाइक इट, सारे गाने कमाल हैं। तो कंप्यूटर जी, इतने सारे गानों का मैंने आपको पता बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक ही गाना सुना पाएंगे। हाँ, 2 गाने तो बनते ना। तो ये गाने सुनिए, आप यादों का कारवां पे रहिए समर के साथ। मैं लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर अब से कुछ ही देर में। स्टे कनेक्टेड।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature veg and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
8: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

वेलकम बैक, यादों का कारवां सुन रहे हैं आप मेरे यानी समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1979 के साल से। 70 के दशक में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर मनमोहन देसाई भी इस साल अपनी एक फिल्म लेकर आए। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है और वो थी सुहाग। एक बार फिर मनमोहन देसाई के हिट स्टार्स थे इसमें अमिताभ बच्चन साहब, परवीन बाबी, शशि कपूर, अमजद खान और रेखा। खलनायक के लिए फिक्स जोड़ी जीवन और रंजीत। कादर खान और निरूपा रॉय भी थी इस फिल्म में। प्रयागराज ने फिल्म लिखी, डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने और यह फिल्म भी वही फैमिली रिलेशन वाली फिल्म थी जैसे कि देसाई साहब की लगभग हर फिल्म में होता था। अमजद खान की बीवी होती है निरूपा रॉय जो दो बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कादर खान जो एक गैंगस्टर होते हैं एक बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और जीवन को सौंप देते हैं। तो जी एक बेटा तो अपनी माँ के पास बड़ा होता है जो कि है शशि कपूर, वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं एंड एक बेटा जीवन के पास बड़ा होता है और जीवन की तरह शराबी कबाबी बन जाता है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा होता है वो। फिल्म का म्यूजिक बड़ा कमाल का है, आपको बेहतरीन गाने देखने को मिलेंगे। मेरा तो फेवरेट है रेखा और अमिताभ पर फिल्माया गया 18 बरस की तू होने को आए रे कौन पूछेगा जतन तू कुछ कर ले। इसके अलावा शशि कपूर और अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया गया गाना दोस्ती का गाना जो शोले के बाद मेरे ख्याल से दोस्ती के लिए सबसे ज्यादा हिट गाना हुआ करता था उस दौर में, ए यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। एक और गाना था माँ की भेंट थी।

इसके अलावा एक गाना और था जो मस्ती से भरा था, तेरी रब ने बना दी जोड़ी तेरी रब ने। ये गाना लंदन की हाइड पार्क में पिक्चराइज है, जिसमें साउथ हॉल के यूके बेस्ड डांस ग्रुप ने डांस किया था। मनमोहन देसाई की फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है ये, आप देख सकते हैं। खैर अभी तो आप ये गाने सुन लीजिए इस फिल्म से। मुझे लगता है कि एक गाने से तो काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर जी अप टू यू।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: आजा,
1: दिल की प्यास बुझा जा रे। अरे आप आ गए, मुझे पता नहीं चला। नमस्कार, मेरा नाम है समर, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं तो यादों का कारवां लेकर आपसे मुखातिब हूँ, और आज जो हमारा एक कारवां है ये गुजर रहा है 1979 के साल से, 1979 से। और ये जो गाना आज अरे अभी मैं गुनगुना रहा था ना, कितना मस्त है गाना, नूरी नूरी फिल्म का ये गाना है। आपने नहीं देखा, क्या बात कर रहे हैं आप, सच में। तो चलिए इसी फिल्म की बात कर लेते हैं। यश चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और

मनमोहन कृष्ण ने इसे डायरेक्ट किया था। यह फिल्म सुपरहिट हुई और साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में फारूक शेख साहब थे, पूनम ढिल्लन थी, मदन पुरी और भरत कपूर थे। भरत कपूर इसमें विलेन की भूमिका में थे। जम्मू कश्मीर के बदरवा कस्बे में नूरी अपने फादर इफ्तिखार साहब के साथ रहती हैं और ये फारूक शेख से मोहब्बत करती हैं। अब ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच यूसुफ यानी फारूक शेख के बॉस जो कि भरत कपूर हैं, वो नूरी को पसंद करने लग जाते हैं और शादी को रुकवाने के लिए यूसुफ को काम के सिलसिले में बाहर भेज देते हैं। नूरी के फादर से बशीर खान जो कि भरत कपूर हैं, वो शादी के लिए नूरी का हाथ मांगते हैं। फिर बाद में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अब इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी ना, पूरी फिल्म की स्टोरी मैं थोड़ी सुनाऊंगा। क्लाइमेक्स इसका बेहद कमाल का है, म्यूजिक कमाल का ही है जो खय्याम साहब ने कंपोज किया, बहुत जबरदस्त है। और गाने लिखे जावेद अख्तर साहब के फादर जानिसार अख्तर साहब ने। आ जा रे मेरे दिल पर आ जा, इसके अलावा चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके, उस टाइम पर बन रही फिल्मों में एक अलग ही टाइप की फिल्म है ये। इट्स डिफरेंट बट सुपर्ब। मौका मिले तो देखिएगा, गाने सुन लीजिए। अभी तो यादों का गारवा पे आप हैं समर के साथ।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनेंगे यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यादों का कारवा में। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज हमारा कारवा गुजर रहा है 1979 के साल से, 1979। जहाँ ये दशक पूरा हो रहा था इस साल, वहीं नए नए एक्टर्स की एंट्री भी हो रही थी, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, ऋषि कपूर अब तक सुपरस्टार हो चुके थे, और एक शख्स जिसका गोल्डन टाइम चल रहा था वो हैं अमिताभ बच्चन साहब। सुहाग और काला पत्थर के बाद इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई इसी साल, मिस्टर नटवरलाल। सिंगापुर शायद आपको नहीं पता होगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ठग हुआ करते थे नटवरलाल। कहते हैं इन्होंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को चूना लगाया था, यहाँ तक कि इन्होंने तो ताजमहल और लाल किला भी बेच दिया था। तो इस फिल्म के कैरेक्टर का नाम, जो कि अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, इसी नटवरलाल पर बेस्ड है। डायरेक्टर राकेश कुमार ने इसे डायरेक्ट किया, और राकेश कुमार ने ही फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। डायलॉग्स कादर खान ने लिखे हैं। फिल्म का कंटेंट एक्शन कॉमेडी है, जहां अमिताभ बच्चन अपने बड़े भाई जो कि अजीत हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ रहते हैं। अमजद खान जो खलनायक है, वो अजीत को रिश्वत के आरोप में फंसा देते हैं। इसके बाद नटवर यानी अमिताभ बच्चन साहब कसम खाते हैं अमजद खान से बदला लेने की, और वो एक अनजान मिस्टर नटवरलाल के नाम से बुरे काम करने लग जाते हैं, जो आम जनता के लिए बुरे नहीं होते, सिर्फ अपराधियों के लिए बुरे होते हैं। इस फिल्म में बहुत कुछ खास है। आनंद बख्शी साहब ने इसके लिए गाने लिखे हैं, और एक गाना जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, वो उनका फेवरेट सॉन्ग बन गया था और आज भी उतना ही फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। ये अमिताभ बच्चन साहब का पहला गाना है जो उन्होंने खुद गाया था। पहले तो मना कर दिया था उन्होंने, लेकिन आनंद बख्शी साहब ने बार बार रिक्वेस्ट की तो वो मान गए, गाना गाया, और आप सुनिए बेहद कमाल का ये गाना। और एक और गाना है, अगर अमिताभ बच्चन और रेखा के किसी भी गाने की बात होती है तो ये गाना तो जरूर उस लिस्ट में होता ही है, परदेसिया। जी परदेसिया, ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। इन दिनों में इन दोनों का अफेयर भी काफी चर्चा में था, तो ये गाना भैया बार बार दिखाया जाता था सिनेमा में। मतलब लोग क्या करते थे कि प्रोजेक्टर रूम की जिस विंडो से लाइट आती थी, जिससे प्रोजेक्ट होता था, उसके सामने खड़े हो जाते थे, उसमें सामने शर्ट लटका दिया करते थे और कहते थे रिवाइंड करो, फिर से सुनाओ, फिर से दिखाओ। ये आलम था इस गाने को लेकर, ये क्रेजीनेस थी उस जमाने में इस गाने को लेकर। इसके अलावा मुझे तो वो गाना भी अच्छा लगता है, अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, ये भी मुझे मुझे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मेरे ख्याल से परदेसिया तो बनता है, क्या कहते हैं आप? और फिर जब परदेसिया हो जाएगा तो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा नहीं सुनोगे। कंप्यूटर जी दो गाने बैक टू बैक प्ले कीजिए प्लीज, और आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ यादों का कारवां। कुछ यादें ताजा हुई तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।

0: are tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी,
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

मेरा दिल है दीवाना दीवानों का।

हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तोबा तोबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां ओनली ऑन रेडियो मैजिक 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। अगली सुपरहिट फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा यादों का कारवां में, वो है लहू के दो रंग। डैनी, विनोद खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी, हेलन, रंजीत, मैकमोहन इस फिल्म में थे। बहुत ही कमाल की स्टोरी है जिसमें विनोद खन्ना एक फ्रीडम फाइटर होते हैं और वो हांगकांग चले जाते हैं जहां हेलन उनको बचाती हैं। इसी बीच दोनों में प्यार हो जाता है और हेलन बच्चे की मां बनने वाली होती हैं। लेकिन वो शमशेर यानी विनोद खन्ना से कहती हैं कि तुम एक मिशन पर हो इसलिए तुम इंडिया जाओ वापस, लेकिन अपने बेटे को लेने जरूर वापस आना। यहाँ शमशेर पहले से शादीशुदा है जिससे उसे ऑलरेडी एक बेटा है। शमशेर का दोस्त शंकर यानी रंजीत शमशेर को मार देता है अपने दोस्त मैक की मदद से, लेकिन दोनों जो सोना लूटते हैं उसमें से एक मैक रख लेता है और शंकर को पता भी नहीं चलता। मैक 14 साल के लिए जेल चला जाता है। इंद्राणी मुखर्जी से जो बेटा होता है वो बड़ा होकर विनोद खन्ना ही बनते हैं, मतलब डबल रोल है विनोद खन्ना साहब का। उधर हेलन का बेटा बड़ा होकर डैनी बनता है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट है जब दोनों भाई मिलते हैं एंड विनोद खन्ना जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो अपने बाप के कातिल को ढूंढते हैं। इस बेहद कसी हुई स्टोरी को लिखा है सूरज सनीम ने और डायरेक्शन जानते हैं किसने किया है? महेश भट्ट साहब ने। फिल्म के गाने बप्पी लहरी ने लिखे हैं और म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया है, जिसमें एक गाना तो मेरा जबरदस्त फेवरेट है, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुलबदन मेरी बात मानिए। इस फिल्म ने दो फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जो बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए था एंड दूसरा था अवार्ड मधुरकर एस शिंदे के लिए जो बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए उन्हें मिला। तो यूं कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, मौका मिले तो जरूर देखिएगा। अभी तो चाहिए थोड़ा प्यार, आने दें, सुन लेते हैं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy Alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go.
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

यादों का कारवां में आप सभी का एक बार फिर दिल से स्वागत है। और आज ये जो हमारी मुलाकात है, ये आखिरी मुलाकात है, लेकिन आपको हमारा ये यादों का कारवां कैसा लगा आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आकर कीजिएगा। एंड आज की जो लास्ट मूवी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है अमिताभ बच्चन साहब की ही इस साल की 79 की लास्ट मूवी। हालांकि ये फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं थी उस टाइम पर, तो नहीं थी, लेकिन

ओम शिव पुरी जगदीश राज, जो कि एक बार फिर से पुलिस इंस्पेक्टर बने। एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आप नहीं जानते हूं कि जगदीश राज का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है सबसे ज्यादा पुलिस की भूमिका करने के लिए। इनके अलावा हेलेन भी है, बेहद खूबसूरत फिल्म है जिसमें एक गाना जो कि वेनिस में फिल्माया गया है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, कल्ट क्लासिक सॉन्ग है जो आज भी उतना ही पॉपुलर है, कम से कम लव कपल्स में तो उतना ही पॉपुलर है जितना तब था। और साहब इतनी बड़ी और खूबसूरत फिल्म बनाने वाले पता है कौन थे? शक्ति सामंत साहब। हाँ, गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक था पंचमदा का। तो चलिए इसी फिल्म के गानों के साथ दीजिए मुझे इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेरे कुछ वादे हैं, उन पर अमल जरूर कीजिएगा। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, कहिए हाँ, अपने साथ अपने अपनों का, उनके साथ अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर सज जाएगा और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में और इंतजार कीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, टेक गुड केयर।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले। अरे

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: हे बेनी,
2: या
1: बली,
2: हुप,
1: हिप्स,
2: हे
3: गोपी,
2: या
1: पा पा पा पावन,
2: बोल,
1: हाय भंस,

0: खेला ना खेला
1: तोरी शब्द में उमरिया।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: ओहो अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू।
3: नहीं नहीं नहीं भाभी ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
2: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ,

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है
2: जोश में रहो।
3: give me love and give me more, थोड़ा सा

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Pe.
1: 7:05 हो चुके हैं, 5 मिनट। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मस्ती का मंत्र विद अंतरा ऑफ कोर्स यहाँ पर शुरू हो चुका है। एंड यस, मैं यही सोच रही थी कि सुबह सुबह व्हाटएवर वी काइंड ऑफ फील द फर्स्ट थिंग, इट एक एक मूड सेट कर देता है बाकी के दिन के लिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट इट विद अ स्माइल। बताए कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के और मेरी आवाज़ सुन के। ऑफकोर्स चार्ली चैपलिन का एक काफी फेमस था कोट है, ही सेड दैट अ डे विदाउट अ लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, एंड दैट इज सो वेरी ट्रू। कितनी सिंपल सी बात है ये, दैट हम लाइफ में कभी कभी इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि डेडलाइंस है, जिम्मेदारियां हैं, ट्रैफिक है, बिल्स हैं, गुड मॉर्निंग सपना आंटी बिल्कुल कहना है, नोटिफिकेशंस हैं, स्माइल भी करना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी चीजों के बाद हम स्माइल कैसे करें। बट सीरियसली, a genuine smile has a lot of power, not just for others but आपके खुद के लिए भी। कभी आपने notice किया है कि जब आप सुबह किसी को smile करके good morning बोलते हो तो सामने वाले का tone भी automatically soft हो जाता है, because this morning only happened, मैं lift में थी and मैंने किसी कोई था साथ में मेरे और मैं उनको नहीं जानती, कभी मैं मिली नहीं, कुछ नहीं, but just smile and saying good morning to that person for moment, 2 moment, 3 second, yeah, everything became quite nice and positive energy, spreads faster than we realize. So positive attitude ka matlab ye bhi nahi hai ki life mein kabhi problems nahi hongi, that will be like too much to ask for, nahi bilkul hongi, but the attitude definitely decides whether you face the day. And Disha bhi yahan par aa chuki hai, good morning, good morning. So well, let's take it one step at a time. Chai ka first sip, ये जो बस आपसे बात करने के बाद जब अंदर जाएगा तो बात और भी ज्यादा अमेजिंग और ऑसम हो जाएगी। तो एक बड़े से स्माइल के साथ आई एम टेलिंग यू गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं अच्छे अच्छे गानों का सफर। बातें काफी कुछ हो गया भाई, रात रात में काफी सारी खबरें इकट्ठा हो गई हैं। सो वी शैल टेक इट ऑल्सो दैट वन एट अ टाइम। गुड मॉर्निंग।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो, जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा।
2: हाँ जी जी।
1: आधा केजी मसूर दाल।
2: जी जी।
1: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे हंत्रा।
3: 7:00 हो चुके हैं 19 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती का मंत्र बिल्कुल शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सिंगापुर की खबर से शुरू करते हैं, सुबह सुबह ट्रैफिक की बात करते हैं। क्विक अपडेट भाई, अगर आप डेली ड्राइव करते हैं, सो दिस वन ऑफ कोर्स इट इज समथिंग यू मस्ट नो। LTA जो है उन्होंने अनाउंस किया है दैट ERP रेट्स जो है इट इज गोइंग टू इंक्रीज अगेन फ्रॉम द एंड ऑफ जून एट सिलेक्टेड गैंट्रीज, स्पेशली ऑन द स्ट्रेचेस लाइक AYE and PIE during peak morning hours, क्योंकि traffic का congestion has apparently gone up. मतलब अब morning drive जो है सिर्फ traffic का stress नहीं होगा, उसके साथ calculation भी होगा कि 15 मिनट पहले निकल जाए, should I avoid ये वाला रास्ता, coffee ले लूँ या फिर ERP भर दे। So you know, all of these things happen, and especially who the people who have car, they need to do for people like me, जो कि 11 लाख की गाड़ी बस and जो है MRT पे पूरे पूरे, एंड आई थिंक मैं मिस भी नहीं करती उतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सिंगापुर में मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, देर इज नथिंग कॉल्ड ट्रैफिक जैम इन सिंगापुर, नहीं। सो वेल, यहाँ पे जो है अक्सर मैंने देखा है ERP के टाइमिंग्स और ये सारी चीजें लोग बड़े सीरियसली, जैसे स्टॉक की बात करते हैं ना, वैसे यहाँ पे लोग इन सब चीजों के बारे में भी बात करते हैं। नाउ द इंक्रीज इज मोस्टली अराउंड $1 मोर ड्यूरिंग सर्टन पीक टाइमिंग्स, एंड सम कंट्रीज में गो अप टू $5 ड्यूरिंग रश आवर। एंड या देर इज अ स्मॉल रिलीफ दैट ड्यूरिंग जून स्कूल हॉलीडेज जो है, जो कि बस आने ही वाली है, सम ERP रेट्स विल एक्चुअली बी टेम्पररी reduced before the new revised pricing जो है वो वापस से शुरू हो जाए। I mean, yeah, it's kind of a strategy जो है जो लोग drive करते हैं, timing matters, route matters, even that 1 minute का delay also matters. So if you are someone who drives to work every morning, maybe yeah, it's just kind of you can plan ahead. That's why मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ, क्योंकि काम ही हमारा यही है आपको हमेशा अपडेटेड रखना। फिलहाल के लिए गाने से अपडेट कर देती हूँ, अरिजीत एंड रोशन कोहली कमिंग टुगेदर फ्रॉम द साउंड ट्रैक ऑफ पति पत्नी, और वो दिस इज ब्यूटिफुल यारो यानी दोस्ती वाला सॉन्ग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: ये मुझको बता रही हूँ ट्रैफिक अपडेट अभी यहाँ पर बता रही हूँ। 7:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, नहीं बात करते 7:30 हो चुके हैं। अभी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा ऑन CTE टुवर्ड्स AYE बिटवीन AMK एवेन्यू 1 एंड AMK एवेन्यू 5। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन BKE टुवर्ड्स PIE बिटवीन बुकेट पंजांग रोड एंड SLE। हेवी ट्रैफिक मिलेगा ऑन BKE टुवर्ड्स PIE एट KJE एग्जिट। दैट वॉज इन फैक्ट ट्रैफिक अपडेट। इस घंटे भारी भरकम एकदम रोड्स में अच्छा खासा ट्रैफिक है और हम यहां से जागे जागे करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जागे जागे, that's what we will keep on telling us all day long. It's just Tuesday, but a beautiful Tuesday morning. Good morning.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus. Offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: It's 7:38 by the studio clock. Good morning. Radio Masti 24/7 live on Trap के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा. भाई कल से काफी सारी चीजें जो है चलती हुई जा रही है. कल ही की वो डेट थी, शाम का वो शो था जब मैंने आपको बताया था. इनफैक्ट आई मेड यू लिसन टू अ वॉइस नोट जो कि था एक फिल्म प्रोड्यूसर के. सो देर आर लॉट ऑफ केसेस विच इज गोइंग ऑन अभी फिलहाल बॉलीवुड में. लेट अस टेक देम अप वन बाय वन. ये वाला मैटर जो है ये है, ये जवानी मतलब है जवानी तो इश्क होना है. या इट्स द वरुण धवन मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड हाल ही में ये एकदम डाइव कर चुकी है एक कंट्रोवर्सी में जहां पे जिनके जो प्रोड्यूसर साहब है लाइक द ओरिजिनल मूवी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट पीवी नंबर वन, वो उनका ये कहना है कि इन्होंने तो ऐसे ही बिना मुझसे पूछे ये गाने जो है उठा लिए हैं. मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि हम इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट नॉट ओनली वन, देयर आर टू सॉन्ग्स व्हिच हैव बीन पिक्ड अप एंड रिक्रिएटेड. एंड अपेरेंटली आज की डेट में ही एक और गाना रिलीज होना है. नो आइडिया कि वो कितना दूर तक और आगे बढ़ पाएगा. अभी तो यही कह रहे हैं कि चलो जून में रिलीज हो जाएगी, बट वो भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ चुका है बिकॉज पूजा एंटरटेनमेंट यानी कि जो है प्रोड्यूसर साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है वो ये लीगल बैटल विन कर चुका है अगेंस्ट टिप्स म्यूजिक. सो कोर्ट जो है उन्होंने कहा है कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइकॉनिक फिल्म एंड म्यूजिक राइट्स जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी. तो मतलब ये है कि एक सिंपल सा प्रिंसिपल है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कि कोई भी म्यूजिक कैटलॉग या साउंड रिकॉर्डिंग या अंडरलाइंग वर्क या प्रोप्राइटरी फिल्म लाइब्रेरी दे can be commercially exploited, licensed, repurposed, monetized, or utilized. ये नहीं किया जा सकता without the explicit consent of the rightful producer and owner. Now, it's kind of काफी time से it's काफी सारे producers ये आवाज already पहले उठा चुके हैं. It's a long waited recognition for the effort and the investment and the creativity and the risk जो कि जाता है इसमें बाय द प्रोड्यूसर्स इन बिल्डिंग द सिनेमैटिक लेगेसीज ओवर डेकेड. तो भाई अब कहा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है सारी पार्टीज को जो इन्वॉल्व है इस केस में टू मेंटेन स्टेटस को इन द मैटर एंड ऑल कंसर्न पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द सेड ऑर्डर. कोई नहीं यूज करेगा. कल ही तो मैंने देखा कि एक गाना जो है इन लोगों ने टीज किया है कि रिलीजिंग टूडे एंड नाउ No idea whether it is going to release today or whether it is going to release at all. Yeah, overnight काफी सारा कुछ हो गया. Not only this, there is something else which has happened overnight. Let me come back and tell you about that. But right now, let's go move ahead. गाने सुनते हैं, वापस आते हैं. We're ready wedding से coming up next. This आ जाओ ना. Okay, आ जाओ फिर.

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
6: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
7: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
8: 7:51 हो चुके स्टूडियो क्लॉक में। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। ट्यूसडे मॉर्निंग है, इसका मतलब कि मेरी आवाज यहाँ पर इसीलिए आ रही है भाई। एनडीपी यानी कि सिंगापुर नेशनल डे की जो है बातें एंड चर्चा ऑलरेडी काफी शुरू हो चुकी है। एंड एनडीपी के कहा जा रहा है 2026 के टिकट के एप्लीकेशन दे आर नाउ ओपन until June 6th. तो जितने भी सिंगापुर के citizens हैं and PRs, they will be able to apply for 2 या 4 या फिर 6 tickets via उनका official NDP का channel using SingPass आपका before going in the ballot system instead of that first come first serve. Now organizers जो हैं उन्होंने warn किया हुआ है public को, और वो ये कह रहे हैं to only use official links and be cautious of the scams, क्योंकि fake pages जो है वो काफी time पे appear कर जाते हैं during high demand events. And इस साल का parade जो है it returns to the national stadium, and you know about that because we have been talking about it since yesterday. नए features like indoor drone show जो है introduce किया जा रहा है इस बार। 3 नए गाने जो है वो introduce किए जा रहे हैं। A nationwide treasure hunt is going to be introduced, but some favorites जैसे कि हमारे red lions and military flypast जो है will not be included because of the operational reasons. So इसके जो results हैं वो release किए जाएंगे between June 15th and 17th इनके official channels के जरिए। So well, अगर आपने attend करना है तो आपको अब पता है कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। सब चीज की तैयारी, एक चीज खत्म होती है दूसरी आती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आती है। हमारे यहाँ भी काफी सारा कुछ अभी it's brewing, it's cooking, and it's all about Lion City. It is going to be about Lion City. I am pretty much excited, but ये teaser इतना ही काफी है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पे ये घंटा wrap up होने वाला है। मिलते हैं अगले घंटे में। And of course, I have to tell you that overnight, क्यों 4 लाख producers ने in the industry कर दिया है ban? किसको? धरंधर, यानी कि हमारे हमसा को, यानी कि रणवीर सिंह। या लेट मी कम बैक एंड टेल यू मोर अबाउट दैट। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।